मेरे पास एक प्यारा सा बुलबुल का बच्चा था जो खिचड़ी खाता था और रोज सुबह मुझको अच्छे अच्छे गाने सुनाता था। मगर एक दिन वो बुलबुल का बच्चा मुझसे रूठ कर चला गया और अभी तक वापस नहीं आया।

दोस्तों, आपने चांद को आसमान पर चमकते तो देखा है, लेकिन कभी चांद को नदी में नहाते देखा है? आए देखते हैं।

बहुत ही शरारती चूजे थे। एक दिन दोनों घर से निकलकर एक बाग में गए और वहाँ बेचारे एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। और पता है फिर क्या

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हर काम शुरू करने से पहले हमें अल्लाह का नाम

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: सच बोलने वाला बहुत बहादुर होता है, बिल्कुल शेर की तरह, और झूठ बोलने वाला बहुत बुजदिल होता है, चूहे की तरह। इसलिए

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: मेरे पास एक मुर्गी है जिसने अपने चूहों के साथ फौज बनाई हुई है। वो हमेशा घर से कुटकुट करती हुई निकलती है और अपनी फौज को साथ लेकर चलती है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें अपने वतन के लिए बहुत मेहनत से काम करना चाहिए। आए सब मिलकर अपने वतन के लिए एक तराना।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: Code 6, 105 North Avenue 52.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

करते हैं मर्द गम ही गम है जो मेरी नज़मों के जंगलों के विषमत रस्तों पे खो गए वो साल खुर्दा हसीन औरत भी गम का चेहरा बनी हुई है जिसे मोहब्बत ने रोशनी की नवीद दी थी वो जिसने वादों से अपनी मंजिल कशीद की थी वो गांव की कच्ची पक्की राहें मेरी माँ की नहीं बाहें भी गम ही गम थी कि मेरा बचपन तो गम के लंबे सफर की गमगीन इब्तिदा थी।

मिजाज और हकीकत भी सारे गम है। मैं एक शायर, मैं एक साहिर, मैं आगही के अजाब में गुम सफर का अंजाम जानता हूँ। मैं मानता हूँ कि हर खुशी का इमाम गम है तमाम।

Salutations, buddy.

Absolument.

चाहे मेरी जान ले ले, आरजू हो जाए।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। 10/5/2026 का प्रोग्राम है। सामने नाज़रीन, आपको पता है कि आप सोशल मीडिया को देखते रहते हैं, वेबसाइट्स को देखते रहते हैं, आप पाक अम्बेसी की वेबसाइट को भी देखते रहते हैं। तो ये मर का हक का जो आपने लोगो देखा होगा, टाइटल देखा होगा, आज 10 तारीख के हवाले से तो बातें चल रही हैं प्रोग्राम के हवाले से। तो हमने कहा क्यों ना हम अपने सफ़ीर मोहतरम से पूछें वो अपनी कौम को, अपने लोगों को क्या पैगाम देंगे। शुएब सरवर साहब, आपको अदारा आपकी आवाज़ पर एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम जी राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मोहतरम अम्बेसडर साहब, आज मार का हक जो है वो प्रोग्राम हो रहा है, मनाया जा रहा है पाकिस्तान अम्बेसी में, दावत आम है, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
2: जी आज दोपहर को अम्बेसी में 2 बजे जी इवेंट है, और जो 1 साल पहले भारत ने पाकिस्तान पे जो हमला किया था और जिस तरह हमने उसका जवाब दिया, आज हम उसका एक सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अब की पाकिस्तान की मुसल्ला फौज को, पाकिस्तान के अवाम को और इदारों को, लीडरशिप को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि जिस तरह कौम ने यकजा होकर साल पहले दुश्मन के जो नापाक अजायम को नाकाम बनाया था, तो उसके सिलसिले में एक इवेंट है। और मुझे उम्मीद है कि जो पाकिस्तानी डेनमार्क में रहने वाले हैं वो इसमें भरपूर शिरकत करेंगे। और उसके अलावा मुझे ये पता लगा है कि जो पाकिस्तानी एक कम्युनिटी की तरफ से कार रैली भी है एक, और वो भी इन द एंड वो कंक्लूड एम्बेसी में करेंगे, तो मैं उनको भी वहां वेलकम करूंगा।
1: बिल्कुल सरवर साहब, ये सारी चीजें हो रही हैं, लोग जोश व खरोश से इस पर आना चाहते हैं, तो ये किसी मखसूस के लिए दावत तो नहीं है ना, ये दावत आम है ना?
2: जी तमाम लोगों के लिए दावत है, जो तमाम पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं डेनमार्क में वो आए और शिरकत करें।
1: सफीर मोहतरम, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती टाइम से आपने हमारे सामाइन को मुखातिब किया।
2: थैंक यू जी, थैंक यू राजा साहब।
1: सामान्य नाजरीन, ये थे सफीर पाकिस्तान शुएब सरवर साहब, जिन्होंने बिल्कुल ओपन पैगाम दिया है, ये दावत आम है, रैली का भी उन्होंने जिक्र किया, रैली को वेलकम भी करेंगे और 2 बजे अम्बेसी में भी जो है वो आपको वेलकम करेंगे। तो ये सारा मिला जुला जो ये प्रोग्राम है, ये सब के लिए, ये सब का प्रोग्राम है, आपका अपना प्रोग्राम है, ये किसी मखसूस बंदे का प्रोग्राम नहीं, ये किसी मखसूस किसी तंजीम का प्रोग्राम नहीं, ये पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है, ये फौज पाकिस्तान से हजार यकजहती का प्रोग्राम, ये मार का हक का प्रोग्राम है। सामान्य नाज़रीन, आपको जोगदार जोग जो है वो अम्बेसी में जाना चाहिए, रैली में शामिल होना चाहिए, हमारे साथ साथ रहिएगा।
3: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदार आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। 10/5/2026 का प्रोग्राम है। सामने नाज़रीन, आपको पता है कि आप सोशल मीडिया को देखते रहते हैं, वेबसाइट्स को देखते रहते हैं, आप पाक अम्बेसी की वेबसाइट को भी देखते रहते हैं। तो ये मर का हक का जो आपने लोगो देखा होगा, टाइटल देखा होगा, आज 10 तारीख के हवाले से तो बातें चल रही हैं प्रोग्राम के हवाले से। तो हमने कहा क्यों ना हम अपने सफ़ीर मोहतरम से पूछें वो अपनी कौम को, अपने लोगों को क्या पैगाम देंगे। शुएब सरवर साहब, आपको अदारा आपकी आवाज़ पर एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम जी राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मोहतरम अम्बेसडर साहब, आज मार का हक जो है वो प्रोग्राम हो रहा है, मनाया जा रहा है पाकिस्तान अम्बेसी में, दावत आम है, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
2: जी आज दोपहर को अम्बेसी में 2 बजे जी इवेंट है, और जो 1 साल पहले भारत ने पाकिस्तान पे जो हमला किया था और जिस तरह हमने उसका जवाब दिया, आज हम उसका एक सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अब की पाकिस्तान की मुसल्ला फौज को, पाकिस्तान के अवाम को और इदारों को और लीडरशिप को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि जिस तरह कौम ने यकजा होकर साल पहले दुश्मन के जो नापाक अजायम को नाकाम बनाया था, तो उसके सिलसिले में एक इवेंट है। और मुझे उम्मीद है कि जो पाकिस्तानी डेनमार्क में रहने वाले हैं वो इसमें भरपूर शिरकत करेंगे। और उसके अलावा मुझे ये पता लगा है कि जो पाकिस्तानी एक कम्युनिटी की तरफ से कार रैली भी है एक, और वो भी इन द एंड वो कंक्लूड अम्बेसी में करेंगे, तो मैं उनको भी वहां वेलकम करूंगा।
1: बिल्कुल शुएब सरवर साहब, ये सारी चीजें हो रही हैं, लोग जोशो खरोश से इस पर आना चाहते हैं, तो ये किसी मखसूस के लिए दावत तो नहीं है ना, ये दावत आम है ना?
2: जी जी, तमाम लोगों के लिए दावत है, जो तमाम पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं डेनमार्क में वो आए और शिरकत करें।
1: सफीर मोहतरम, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती टाइम से आपने हमारे सामाइन को मुखातिब किया।
2: थैंक यू जी, थैंक यू राजा साहब।
1: सामान्य नाज़रीन, ये थे सफ़ीर पाकिस्तान शुएब सरवर साहब, जिन्होंने बिल्कुल ओपन पैगाम दिया है, ये दावत आम है, रैली का भी उन्होंने जिक्र किया, रैली को वेलकम भी करेंगे और 2 बजे अम्बेसी में भी जो है वो आपको वेलकम करेंगे। तो ये सारा मिला जुला जो ये प्रोग्राम है, ये सब के लिए, ये सब का प्रोग्राम है, आपका अपना प्रोग्राम है, ये किसी मखसूस बंदे का प्रोग्राम नहीं, ये किसी मखसूस किसी तंजीम का प्रोग्राम नहीं, ये पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है, ये अफवाज पाकिस्तान से हज़ार यकजहती का प्रोग्राम, ये मार का हक का प्रोग्राम है। सामान्य नाज़रीन, आपको जोगदार जोग जो है वो अम्बेसी में जाना चाहिए, रैली में शामिल होना चाहिए, हमारे साथ साथ रहिएगा।

0: रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामने नाज़रीन, ये स्पेशल प्रोग्राम है आज का, और आपको पता है कि 10 मई के हवाले से मार का हक का जो प्रोग्राम आज पाकिस्तान एम्बेसी में हो रहा है, पाकिस्तान एम्बेसी जो है वेलकम करेगी मेहमानों को, और ये दावत आम है। तो हमने कहा पूछें जो लीडरान लोग होते हैं उनकी क्या सोच है, वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो हमारे साथी चौधरी शौकत साहब जो कि मशहूर बिजनेसमैन है डेनमार्क में, समाजी कारकुन भी हैं और सरपरस्त आला भी जो हैं आफ लीग के यहाँ डेनमार्क में, और पुराने मुस्लिम लीग के हैं और 26-28 साल सदर भी रहे। तो हमने कहा ये बेहतर इस बारे में बात कर सकते हैं मार्क हक के मुतल्लिक। तो चौधरी साहब, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, अस्सलामु अलैकुम आपको और आपकी पूरी टीम को और मेरे सुनने वाले सामाइन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम।
1: चौधरी साहब, मैंने छोटी सी तमीद बांधी, आपका बिजनेस कम्युनिटी से भी तल्लक है और आपका समाजी कारकुन भी हैं आप और सरपरस्त आला भी हैं आप जो है मुस्लिम लीग काफ के यहाँ डेनमार्क में, तो आप क्या मार्क हक के हवाले से क्या पैगाम देंगे?
2: जी राज साहब, इंशाल्लाह जो है ना, हम ये जो है ना मार्क हक है जो आज दिन जो पाकिस्तान के हिस्से में आया, पाकिस्तान की फौज ने एक ऐसा कारनामा अरसे दराज के बाद जो है ना अदा जो है ना मार्क हक जिसका नाम है वो किया और जो पूरे पाकिस्तान का सर जो है बुलंद कर दिया, अवाम का भी, फौज का भी, जितने भी सारे हम जो है ना पाकिस्तानी हैं इनके लिए एक बड़े एजाज का दिन है। आज हमें खुशी मनानी चाहिए और इंशाल्लाह हम जो है ना डेनमार्क में एक रैली की शक्ल में पाकिस्तान एम्बेसी में जाएंगे और ये दिन मना के, क्योंकि हम ये दिन जो है ना कभी भी भूलेंगे नहीं जिंदगी में इंशाल्लाह, क्योंकि जो हमारी फौज ने किरदार अदा किया, हमारी क्यादत ने जो है ना जो ना कारनामा अदा किया, ये सभी सभी के नाम जाता है ये जो है ना। और दूसरा ये हम पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम इस दिन को कामयाब करें और खुशी मनाएं इस तरीके से कि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तानी एक कौम है और पाकिस्तानी जो है ना एक दूसरे को पाकिस्तानी के पाकिस्तानी फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और उनकी कामयाबी के लिए हर वक्त दुआगो होते हैं, दुआएं मांगते हैं। हमारी माएं बहनें घर बैठे पाकिस्तान की फौज के लिए दुआगो हैं और दुआएं मांगती हैं कि जो हमारे बच्चे हमारे भाई जो महज पे खड़े होके पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी अवाम के लिए जो हमेशा से कुर्बानी देते रहे हैं वो, लेकिन अब तो ये जो है ना अब जो निकल गया ये पाकिस्तान वाला लफज, अब तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आदत करेगा, पूरी दुनिया पाकिस्तान को जो है ना अपनी जो है ना अपने मुल्क की जो है हफाजत की जो है ना जिम्मेदारी देने को तैयार है। काफी लोग काफी मुल्क जो है ना एग्रीमेंट भी कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ी इजाज़त की बात है, हमारी फौज के लिए इजाज़त की बात है कि जो लोग हम पे इतमाद कर रहे हैं कि जो अगर कोई ताफत दे सकता है तो पाकिस्तान दे सकता है हमें और पाकिस्तानी फौज दे सकती है। तो हम इंशाल्लाह आज रैली की शक्ल में ब्यासा स्वाई पे गौन फैसल है फेम वाई उधर से कारों में ये इंशाल्लाह जोश जज्बे से हम आएंगे
1: रैली में, आए क्योंकि इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको वेलकम करें एम्बेसी में।
2: जी बिल्कुल, और एम्बेसी ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, उन्होंने भी लोगों को दावत आम दी है और पाकिस्तानी लोगों को बाकी लोगों को भी बुलाया है कि आप आए एम्बेसी में आके हमारे साथ ये दिन मनाएं। तो इंशाल्लाह राजा साहब हम बिल्कुल भरपूर तरीके से ये दिन को मनाएंगे, हमारे बच्चे भी, हमारी बहनें भी, हम सब भाई भी मिल के पाकिस्तान के लिए दुआगो हैं और इंशाल्लाह हमेशा दुआ करते रहेंगे और अपना पूरा किरदार अदा करते रहेंगे। हम पाकिस्तानी फौज के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, हम यही एक ही नारा लगाएंगे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद,
1: पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। चलो सब आपका बहुत

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामिन नाज़रीन, आज का प्रोग्राम लाइव लेकर आता रहा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से।

0: आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 10/5/2026 का प्रोग्राम है। यहाँ डेनमार्क में दिन के 11:20 हो चुके हैं और पाकिस्तान में 2:20 हो चुके हैं। सामने नाज़रीन, आपको पता है तारीख सकाम में पाकिस्तान की जो एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसकी बुनियाद शहजादा उस्मान साहब ने रखी, इसकी शाखें पूरे पाकिस्तान में पूरे यूरोप में, तो उन्होंने पिछले दिनों मुतवातर जो रैलियां निकाल रहे हैं और सबसे आखिर में जब वो कराची गए तो बहुत बड़ी रैली थी उनकी कराची में। आज भी हमें सुनने में मिल रहा है कि आज भी वो कराची में रैली निकालेंगे, तो हमने कहा क्यों ना शहजादा उस्मान साहब पूछा। शहजादा उस्मान साहब, आपको अदारा आपकी आवाज पर एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं।
1: राय साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपकी नाजरीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: शहजादा साहब, जरा तफसील बताएं, आज 10 तारीख है और आज आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे डेनमार्क के लोगों को? राय साहब,
1: आज पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये 10 मई मरका हक जो है, ये 1965 की जंग के बाद सबसे बड़ा मरका है और हम सब समझ रहे हैं कि जैसे पाकिस्तानी कौम या मुसलमान जो उम्मत मुसलमान है वो दो ईदें मनाती थी, अब वो तीन मनाया करेगी। इस 10 मई को भी एक तीसरी ईद का जो है ना जश्न पूरी दुनिया में जैसे मनाया जा रहा है और मनाया जाएगा आगे क्यामत तक, क्योंकि इस दिन को पाकिस्तान ने एक जो एशिया का गुंडा बन चुका हुआ था मोदी, उसका गरूर तोड़ के जमीन के अंदर घुसेड़ा। इस दिन 10 मई के महीने में 2025 में जो उसने पहलगाम का एक ड्रामा निचाया और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी करनी शुरू कर दी, पूरी दुनिया में प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया, और जिस पर मैं सलाम पेश करता हूं, पाक फौज ने सब्र का तहमल का मुजाहरा करते हुए पहले दुनिया को बताया कि ये इसका मकरू चेहरा है, ये पाकिस्तान के ऊपर प्रोपोगंडा कर रहा है। और उसके बाद फिर जब इंडिया बाज नहीं आया तो फिर DGISPR ने जिस तरह कहा था कि जब हम करेंगे तो दुनिया बताएगी, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वही हुआ कि पाकिस्तान ने उनके 5 राफेल तैयारों को गिराया और फतह मिसाइलों ने इंडिया की दरो दीवार जो है वो खिला के रख दिए। और आज हम इस दिन के मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं उस अजीम कायद, उस उम्मत मुसलमान के लीडर को, फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हाफिज सैयद आसम मुनीर साहब को, जिनकी क्यादत में ये सब कुछ हुआ है। और हम समझते हैं कि आज का दिन जितना भी जोश व जज्बे से मनाया जाए वो कम है, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने फरमाया कि इस्तेकाम पाकिस्तान ओवरसीज फोरम एक तहरीक का जो है वो वजूद अपना चुकी है पूरे यूरोप में, बरतानिया में, और अब पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर उन्होंने अपने चैप्टर बनाने शुरू कर दिए हैं। फोरम ने कराची में, हमने हालिया अभी बहुत बड़ी 26 अप्रैल को रैली निकाली, सैकड़ों गाड़ियां और एक कन्वेंशन किया गया जिसमें बाजाब्ता तौर पर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान ओवरसीज फोरम और तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान से हमने उधर बुनियाद रखी है। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह गुजर खान के अंदर, खारियां के अंदर, और ये सिलसिला जो है वो सितंबर से हम शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर, जो है वो इस तंजीम को, गैर सियासी फोरम को, इस तहरीक को लेके जाएंगे। और इसका मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सरबुलंदी और फौज पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े होना, क्योंकि अब हमें वक्त आ गया राजे साहब कि हम लोग जो है वो सियासी जमातों से बालातर होकर जो है वो पाकिस्तान का साथ दे। और ये इस काम पाकिस्तान का भी यही पैगाम है, यही उसकी जमात है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की सरबुलंदी और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए और मजलूम कश्मीरियों की आवाज बनने के लिए और मोदी का मकरू चेहरा दुनिया में बेनकाब करने के लिए इंशाल्लाह ताला ये जदोजहद जो है वो दियारे गैर में भी जारी और सारी है, और अब पाकिस्तान के अंदर भी नौजवानों को शऊर देने के लिए, नौजवानों को सबज खलाली परचम के नीचे इकट्ठा करने के लिए इंशाल्लाह ताला अपना किरदार अदा करते रहेंगे। सर,
0: मेरा आखिरी सवाल है शहजादा उस्मान साहब आपसे, आपने पहले यूरोप को बेस बनाया, स्पेन से बुनियाद रखी, फिर आगे चले स्कैंडिनेविया की तरफ आए, आगे बढ़ते रहे, अब आपने बेस अपना पाकिस्तान को बनाया और आज प्रोग्राम आपका करने होने जा रहा है कराची में, तो लोग पाक अफवाज के मुतल्लिक और आसिफ मुनीर साहब के मुतल्लिक क्या कहते हैं, फील्ड मार्शल जो है हमारे?
1: सर, इस वक्त 99% लोग जो है वो फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हाफिज सैयद आसिफ मुनीर के शाना बिशाना खड़े हैं। 1% वो लोग हैं जो इंडियन रा के एजेंट हैं, जो पाकिस्तान का लबादा तो ओढ़ा हुआ है लेकिन अंदर से जो है मोदी की जुबान बोलते हैं, और इंशाल्लाह ताला वो जो 1% लोग हैं उनको भी जमीन दोज हम कर देंगे, उनका प्रोपोगंडा मीडिया के ऊपर भी हम तोड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला यूरोप के अंदर भी तोड़ेंगे और पाकिस्तान के अंदर भी जो वो हमारी सफों के अंदर वो अपनी काली बेड़े खड़ी कर देते हैं, उनको भी बेनकाब करेंगे और कौम के सामने लेके आएंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम पेश करता हूँ इस्तेकामे पाकिस्तान ओवरसीज फोरम की टीम को। स्पेन के अंदर बहुत बड़ी रैली और सेमिनार हो रहा है, इसी तरह यूनान में इस्तेकामे पाकिस्तान ओवरसीज फोरम का जो है वो प्रोग्राम हो रहा है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो है कराची के अंदर आज फिर जो है वो कराची चैप्टर जो है वो रैली निकालने जा रहा है। तो ये सिलसिला ये मई का महीना जारी और सारी रहेगा, बेल्जियम में भी प्रोग्राम होगा, फ्रांस में भी होगा और इटली में भी इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम करेंगे हम।
0: शहजादा उस्मान साहब, आज डेनमार्क में भी रैली निकल रही है, तो रैली का इख्तिताम जो है पाकिस्तान एम्बेसी के सामने होगा, अंदर होगा, सफीर मोहतरम उनको वेलकम करेंगे, आप क्या मैसेज देंगे?
1: सर बहुत बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि ये जो डेनमार्क में रैली निकल रही है, जो भी निकाल रहे हैं तमाम लोगों को, देखे जी हर बंदे का फर्ज बनता है कि वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का परचम थाम के बाहर निकले, वो चाहे किसी जमात से ताल्लुक है चाहे किसी और फोरम से ताल्लुक है, पाकिस्तान के लिए काम करे और आपस में मोहब्बतें बांटे, आपस लोगों को इकट्ठा करके एक मतलब एक जान होकर जो है वो सबज हलाली परचम के नीचे सब इकट्ठे हो, और कोई भी पाकिस्तान का नाम लेता है हम उसे सलाम पेश करते हैं, सलूट पेश करते हैं, उसका किसी भी जमात से ताल्लुक है, किसी भी फोरम से ताल्लुक है, लेकिन खालिस्तान वो अगर पाकिस्तान के, अगर वो लबादा ओढ़कर वो इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान का नाम, तो वो उसकी मुखालफत हम करते हैं। सर
0: शहजादा उस्मान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और अपने कानून कायदे का भी ख्याल रखिएगा।
1: बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह सर।
0: सामान्य नाज़रीन, ये थे शहजादा उस्मान साहब जो कि कराची से बराह रास्त हमारे साथ बात कर रहे थे। आज वो रैली निकालने जा रहे हैं, बहुत बड़ी रैली वो पहले भी निकाल चुके हैं और पूरे पाकिस्तान में ये रैलियाँ निकाल रहे हैं। सामान्य नाज़रीन, हमारा किसी से मुतफिक करना जरूरी नहीं है, कोई बात करना चाहता है, कोई अपना मैसेज देना चाहता है, उसके लिए अदर आपकी आवाज का टाइम हाजिर है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामने नाज़रीन, ये स्पेशल प्रोग्राम है आज का, और आपको पता है कि 10 मई के हवाले से मार का हक का जो प्रोग्राम आज पाकिस्तान एम्बेसी में हो रहा है, पाकिस्तान एम्बेसी जो है वेलकम करेगी मेहमानों को, और ये दावत आम है। तो हमने कहा पूछें जो लीडरान लोग होते हैं उनकी क्या सोच है, वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो हमारे साथी चौधरी शौकत साहब जो कि मशहूर बिजनेसमैन है डेनमार्क में, समाजी कारकुन भी हैं और सरपरस्त आला भी जो हैं आफ लीग के यहाँ डेनमार्क में, और पुराने मुस्लिम लीगी हैं और 26-28 साल सदर भी रहे। तो हमने कहा ये बेहतर इस बारे में बात कर सकते हैं मार्क हक के मुतल्लिक। तो चौधरी साहब, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको और आपकी पूरी टीम को और मेरे सुनने वाले सामाइन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम।
1: चौधरी साहब, मैंने छोटी सी तमीद बांधी, आपका बिजनेस कम्युनिटी से भी तल्लक है और आपका समाजी कारकुन भी हैं आप और सरपरस्त आला भी हैं आप जो है मुस्लिम लीग काफ के यहाँ डेनमार्क में, तो आप क्या मार्क हक के हवाले से क्या पैगाम देंगे?
2: जी राज साहब, इंशाल्लाह जो है ना, हम ये जो है ना मार्क हक है जो आज दिन जो पाकिस्तान के हिस्से में आया, पाकिस्तान की फौज ने एक ऐसा कारनामा अरसे दराज के बाद जो है ना अदा जो है ना मार्क हक जिसका नाम है वो किया और जो पूरे पाकिस्तान का सर जो है बुलंद कर दिया, अवाम का भी, फौज का भी, जितने भी सारे हम जो है ना पाकिस्तानी हैं इनके लिए एक बड़े एजाज का दिन है। आज हमें खुशी मनानी चाहिए और इंशाल्लाह हम जो है ना डेनमार्क में एक रैली की शक्ल में पाकिस्तान एम्बेसी में जाएंगे और ये दिन मना के, क्योंकि हम ये दिन जो है ना कभी भी भूलेंगे नहीं जिंदगी में इंशाल्लाह, क्योंकि जो हमारी फौज ने किरदार अदा किया, हमारी क्यादत ने जो है ना जो ना कारनामा अदा किया, ये सभी के नाम जाता है ये जो है ना। और दूसरा ये हम पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम इस दिन को कामयाब करें और खुशी मनाएं इस तरीके से कि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तानी एक कौम है और पाकिस्तानी जो है ना एक दूसरे को पाकिस्तानी फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और उनकी कामयाबी के लिए हर वक्त दुआगो होते हैं, दुआएं मांगते हैं। हमारी माएं बहने घर बैठे पाकिस्तान की फौज के लिए दुआगो हैं और दुआएं मांगती हैं कि जो हमारे बच्चे, हमारे भाई जो महाज पे खड़े होके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए जो हमेशा से कुर्बानी देते रहे हैं और लेकिन अब तो ये जो है ना, अब जो निकल गया ये पाकिस्तान वाला लफज, अब तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आदत करेगा, पूरी दुनिया पाकिस्तान को जो है ना अपनी

0: जो है ना अपने मुल्क की जो है हफाजत की जो है ना जिम्मेदारी देने को तैयार है। काफी लोग काफी मुल्क जो है ना एग्रीमेंट भी कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ी इजाज़ की बात है, हमारी फौज के लिए इजाज़ की बात है कि जो लोग हम पे इतमाद कर रहे हैं कि जो अगर कोई ताफत दे सकता है तो पाकिस्तान दे सकता है हमें और पाकिस्तानी फौज दे सकती है। तो हम इंशाल्लाह आज रैली की शक्ल में ब्यासा सवाए पे गौन कैसल है फेम वाए उधर से कारों में ये इंशाल्लाह जोश जज्बे से हम आएंगे।
1: आप आए रैली में आए क्योंकि इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको वेलकम करें एम्बेसी में।
0: जी बिल्कुल, और एम्बेसी ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, उन्होंने भी लोगों को दावत आम दी है और पाकिस्तानी लोगों को बाकी लोगों को भी बुलाया है कि आप आए एम्बेसी में आके हमारे साथ ये दिन मनाए। तो इंशाल्लाह राजा साहब हम बिल्कुल भरपूर तरीके से ये दिन को मनाएंगे, हमारे बच्चे भी हमारी बहने भी हम सब भाई भी मिल के पाकिस्तान के लिए दुआगो है, इंशाल्लाह हमेशा दुआ करते रहेंगे और अपना पूरा किरदार अदा करते रहेंगे। हम पाकिस्तानी फौज के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, हम यही एक ही नारा लगाएंगे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद,
1: पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। चलो साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।
1: सामान्य नाजरीन ये थे चौधरी शौकत साहब जो कि यान डेनमार्क के मशहूर बिजनेस मैन है और सरपरस्ते आला भी है, उनकी बात आपने सुनी। उन्होंने पाक फौज के हवाले से मार्क हक के हवाले से अपना मैसेज जो है वो दिया, लाइव मैसेज दिया। तो कोई भी मैसेज देना चाहे तो उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है। समझ चौके आज स्पेशल प्रोग्राम है तो हर आदमी को अपनी हक है, लेकिन हमारा किसी के साथ मुतफिक होना जरूरी नहीं।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपके आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। 10/5/2026 का प्रोग्राम है। सामने नाज़रीन, हम आपसे वादा करते रहते हैं और कहते हैं कि अपने सामने नाज़रीन से कि जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे और हमारे जो तजिया निगार हैं अदनान अली अमीन जो हैं वो आपको बताते रहते हैं। चूँकि खुद सियासतदान भी हैं, तजिया निगार भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, तो उनको अपने भी बहुत सारे काम होते हैं, अपने काम के लिए भी उनको जॉब का भी है उसको भी देखते हैं, बच्चों को फैमिली को भी देखते हैं। तो समय नाज़रीन, ये छुट्टी का दिन होता है उसके बावजूद ये अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए टाइम निकालते हैं और ताज़ा तरीन मालूमात का आपको देते हैं। अदनान, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: वालेकुम अस्सलाम बाबा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप कैसे हैं?
1: अल्लाह का शुक्र अदनान, मैंने छोटी सी तमीद बांध दी है। आज क्या ताज़ी खबरें हैं, नई खबरें हैं, किस तरह तजिया ये पेश करेंगे? मौसम भी ठंडा होता जा रहा है, बादल भी बनते हैं, धूप भी निकलती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन हुकूमती टेम्परेचर जो है वो एक जगह पे रुक नहीं रहा।
2: नहर साहब, देखें, जिस तरह आपने कहा ना, जिस तरह मौसम है कह रहे उसी तरह गवर्नमेंट की हालत है। क्योंकि जैसे व्यूअर्स को हम एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जुम्मे वाले दिन ना जो हम एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे कि इतना क्या कहते हैं चेंज आएगा, वही हुआ के लास्ट लोगों ने कह दिया कि वो अब चाहते कि एक नया, जिसे कहते हैं खांगो कौनते में एक नया बंदा आए और वो ये था कि एक दिन पहले लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो गया था कि कोई ना कोई चीज होने वाली है। क्योंकि एक दिन पहले ना वो लास्ट लोगों और जो थोलसन पॉल्सन ने उनने जो मोनयू ब्लैक कंसर्वेटिव उसकी ऑफिस में मीटिंग की थी और जुम्मे वाले दिन फिर उसने दोपहर को जाके मेरे फर्स्ट में बता दिया था कि मैं चाहता हूँ कि ओसलोन पॉल्सन अब कांगोनते ले और इन नेगोशिएशन को आगे लेके जाना चाहे। उसके बाद मेरे फर्स्ट ने जो है वो तो फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वो किंग के पास गई और उसने कहा कि एक नई कांगोनते होनी चाहिए। उसमें फिर हर पार्टी आती है और अपना व्यू देती है कि किसको देना चाहिए। तो मेरे फर्स्ट के जो 84 शुरू में थे वो उसके साथ ही उधर थे। इस बार इसमें तब्दीली ये आई थी कि मुड़गारा ने जो था ना पिछली बार नहीं कहा लास्ट कोसलोन को दिया, तो उसने इस बार कोसलोन पॉल्सन को और पॉन्स पची का जो था उसने भी उसमें डाल दिया, तो ये करीबन 87 हो गए थे। तो फिर उन दोनों के वापस आए तो मेरे फर्स्ट ने फिर गाइड करना होता है कि किंग ने क्या करना होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है केयर टेकर, तो ये स्टफेट थोलसन पॉल्सन को फिर दे दिया गया कल से और वो कल सुबह फिर अपनी क्या कहते हैं नेगोशिएशन शुरू कर देगा दूसरी पार्टियों के साथ गवर्नमेंट बनाने की तरफ। तो नहीं कह रहे क्योंकि गवर्नमेंट का तो कह लें लो ब्लॉक की गवर्नमेंट बनना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो पहले ही शुरू से ही इतने दूर हैं एक दूसरे से कि मुझे तो नहीं, एनालिस्ट भी यही कह रहे हैं कि करीब नहीं आएंगे। और वो मॉर्टन स्मिथ ने जब वो गया अपना नाम लेके तो उसने पहले ही कह दिया कि मैं तो लास्ट लोगों को किसी कीमत में गवर्नमेंट में मैं नहीं बैठने दूंगा और सोशल डेमोक्रेट की भी गवर्नमेंट में तो वो डेफिनेटली नहीं है क्योंकि वो ब्लॉक ब्लॉक करके नहीं करूंगा। और कल उसने फिर यही फेसबुक पर भी लिखा, मगर उसमें कंसर्न ये था कि उसके दो एजेंडा थे, एक तो ये एजेंडा था कि मुसलमानों को कम किया जाए और दूसरा उसका ज्यादा एजेंडा था कि बेंजीन और ये प्राइस नीचे की जाए। प्रैक्टिकली देखा जाए तो लास्ट लोगों ने जो किया है उसका फायदा तो किसी को नहीं है क्योंकि लास्ट लोगों की एक ही डिमांड है और वो ये है कि एक पलगई गैंग होनी चाहिए। मसला ये है कि पलगई गैंग में ना सोशल डेमोक्रेट कभी नहीं मानेंगे इस वक्त, क्योंकि राजा साहब उस मसला ये है कि जो सोशल डेमोक्रेट में कॉन्स्टिट्यूट 3 इलेक्शन हार के आए हैं, वो यूरोप पार्लियामेंट का भी इलेक्शन हार के आए हैं, कमून का भी इलेक्शन लड़के हार के आए हैं और कमून का इलेक्शन तो वो स्पेसिफिकली कोपेनहेगन में 110 सालों के बाद कोपेनहेगन की चिप वो हार के आए हैं, वो SF से हार के आए हैं, तो वो किसी कीमत पे इस वक्त राजी नहीं होंगे कि जिसमें SF ना बैठे। लास्ट लोग जो है वो उसको अपना ही है बस, वो किसी और को देख नहीं रहा और मेरे ख्याल से टेक्निकली इसके अंदर ये 7-8 दिन के बाद मेरा जो एनालिसिस यही है कि हम दोबारा वहां खड़े होंगे जहां हम शुरू हुए।
1: عدنان جی، لاسٹ لوکے جو ہیں وہ سابقہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، کافی پوسٹوں پر انہوں نے کام کیا اور بہت ساری چیزیں بنائی انہوں نے، بنانے میں ان کا رول بھی ہے، کردار بھی ہے، لیکن اب یہ جو کام کو لمبا کیا جا رہا ہے اس کے پس پردہ کیا چیز ہے؟
2: سب بندہ بندے اس نے کام جو کیا ہے نا، اس میں آپ ٹیکنیکلی دیکھیں نا تو غلطیاں اتنی ہیں کہ بندہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے۔ اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں اپنی چیز ساری قبول نہیں کرا سکتا، کیونکہ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایک سیناریو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب بلو بلاک کی گورنمنٹ نہ بنے، ٹھیک ہے، نہیں بنتی، اور اس نے واپس جانا پڑا اس کو ریڈ بلاک کے پاس، ریڈ بلاک کے ہم نے تمہاری بات ہی نہیں سنی، ہم گورنمنٹ بنا رہے ہیں، تو اس کے پاس تو ایک ہی چوائس رہ جائے گی کہ پھر نیا الیکشن آئے گا۔ نیا الیکشن آئے گا تو یہ کیا لوگ اس کو پریسیٹ کریں گے؟ یہ تو زیادہ مار کھا جائے گا، کیونکہ یہ جو گیم کھیل رہا ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کر کیا رہا ہے اور اس کے دماغ میں کیا ہے۔
1: جب بندہ آخری میچ کھیل رہا ہو تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آخری میچ کی طرف بہت توجہ دیتے ہیں، لگتا ہے ان کو اگلا میچ نہیں پڑے گا، یہ آخری میچ ہے۔
2: صاحب اپنا آخری میچ وہ خود کھڑا کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیں جب نیگوشیشن 80% تک، تقریباً 75-80% تک پہنچ گئی ہوئی تھی، اور اس کی ضد اپنی ضد پہ دے، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ سب کو، سب باقی کی پارٹیاں سب کچھ وہ دے دے، میں کچھ نہ دوں، تو وہ تو نہیں نہ چل سکتا۔ اب میں آپ کو سیناریو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پلو پلاک کو بنانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ دیکھیں پلو پلاک کے اندر جو ہے نا وہ بڑا کیا کہتے ہیں، بڑا مشکل ہے اس میں، کیونکہ اس میں ایک اور بہت بڑا سیناریو ہے کہ جو لاسٹ لوکے میں میرے خیال سے جو اس کی ٹیم تھی نا، اس نے یہ میرے خیال سے امیجن نہیں تھا کیا ہوا کہ جب وزیر اعظم کیئر ٹیکر وزیر اعظم جائے گی ملک اس کے پاس، کنگ کے پاس، تو وہ یہ کہہ دے گی کہ میں پرائم منسٹرشپ ہار بھی سکتی ہوں جس طرح پوزیشن میں۔ مجھے لگتا ہے لاسٹ لوکے کو یہی تھا کہ میں اس کو ہر قیمت پہ بس پرائم منسٹرشپ سے چاہیے اور یہ ہر چیز مان جائے گی، پر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی پاگل ہے کہ وہ اس کے پیچھے اپنی پارٹی اب تباہ کر دے، کیونکہ وہ اپنی پارٹی کے اندر لڑائی پڑ جائے گی۔ لاسٹ لوکے جو ہے نا وہ بڑی خطرناک اس نے کیا کہتے ہیں گیم کھیلی ہے، اور انالائزلی مجھے لگتا ہے اس بار اس نے نا زیادہ ہی اپنے کارڈ جو ہے نا الٹ پلے کر دیے،
1: الٹ پلے کر دیے۔ تو عدنان آپ یہ انالائز کرتے ہیں چیزوں کو اور دیکھتے بھی رہتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، اور پارٹیوں پر بھی آپ کی گہری نظر ہوتی ہے، اپنی پارٹی پر آپ کی نظر ہوتی ہے، لیکن یہ جو اب پینشن کی ہم باتیں سن رہے ہیں کہ پینشن کی عمر کو 70 سال کر دیا جائے، اور اس کا جو سب سے لاسٹ لوکے کی جو ضد ہے یا ان کی ضد ہے یا ان کی خواہش ہے یا وہ ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں کہ پینشن کی عمر 70 سال ہونی چاہیے، کیا اس پہ بات تو نہیں رکی ہوئی
2: بھائی؟ اس پہ برادر صاحب اس پہ بھی بات رکی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں ایک نتیجے، ایک بات اس میں بتاتا ہوں کیوں، کہ کیونکہ لاسٹ لوکے کا نا ایک جگہ کامرس آ گئی تھی کہ اس نے کہا تھا کوئی بات نہیں، بندہ 79 کی عمر تک پینشن پہ کام نہیں کر سکتا، تو وہ پہ جب یہ بات باہر نکلی تھی نا تو اس وقت پہ ہی کیا کہتے ہیں بحث شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اس میں ایک پہلو ہے کہ 2006 کے اندر نا ان نے ایک بل فیسٹ پولی بنائی تھی، اس میں یہ تھا کہ پینشن کی عمر جتنی زیادہ عمر بڑھے گی نا لوگوں کی تو پینشن کی عمر بھی اس کو ہی بڑھے گی، مگر اس کے اندر ان نے یہ نہیں تھا کیا دادا صاحب کہ بیلنس نہیں تھا کیا، کیونکہ کچھ بندے جو 18-19-20 سال کی عمر میں کام شروع کر لیتے ہیں وہ تو 65-70 سال کی عمر تک ان کا کیا کہتے ہیں اتنا نہیں رہ جاتا کہ وہ نہ کرے، اور وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، وہ بلیدہ بات ہے، مگر بندہ روک نہیں سکتا، مگر اس کی ضد یہی ہے کہ اس پلی کو بدلا نہ جائے تو پینشن بڑھتی جائے۔ دوسری پارٹیاں چاہتی ہیں کہ پینشن کا ایک نیا ریفارم آئے، اور اس پہ نا اس میں ہی تو ایک آپ کو میں اور سب سے بڑی بات بتا دوں، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ٹینس بال کے پچھی جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ فارنوں کے خلاف ہو، جو مرضی ان کی پالیسی ہو، انہوں نے اس ڈیل سے اپنے آپ کو باہر نکال دیا ہو، کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پینشن کا ریفارم ایک نیا آنا چاہیے، تو اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ لاسٹ لوکے کی جو ضدیں ہیں نا وہ بہت غلط ہیں۔ لاسٹ لوکے چاہتا ہے کہ 100% جو اکمالی پالیسی ہے نا وہ بیسک اس پہ بس بنے، نہ بڑی یہ ریفارم پارٹیوں پہ بنے، مگر راجا صاحب آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ٹیکنیکلی 2022 کا 2026 کا الیکشن کا رزلٹ ایک قسم کا یہ بھی ہے کہ لوگ وہ چیز نہیں چاہتے، تو اس لیے لاسٹ لوکے کو یہ حرکت نہیں تھی کرنی چاہیے جمعے کو، کیونکہ جس طرح صورت حال ابھی ہے ملک کی، جس طرح ملک کے کنڈیشنز ہیں، گورنمنٹ کو بننا چاہیے، इसको अपनी जिद से थोड़ा बहुत हटना चाहिए, और ये ना हो कि कमिंग डेज में अभी तो किसी को नहीं ना मालूम कि टेबल पे क्या पड़ा हुआ था और कि किस बात से नशा है, क्योंकि इसने एक और जिद लगाई हुई थी कि मैंने किसी पार्टी के साथ बैठ के बातचीत नहीं करनी, मैंने खाली मेरे पास करनी। ये भी तरीका का था, इसका अच्छा नहीं है। ये मैं बात आपको कह दूं, टेक्निकली बात ये है, क्योंकि बात ये होती है राजा साहब कि ये ना जब से अमेरिका से वो मीटिंग करके आया ना, ये अपने आप को बहुत क्या कहते हैं समझा लग पड़ा कि मैं ही कर सकता हूँ। मगर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ व्यूअर को, कि हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है और हमें भी अंदाजा होता है, और हमें भी अब समझ आ रही है कि ये जो मीटिंग अमेरिका में करके आया था ये इसकी कामयाबी नहीं थी, उसके पीछे कुछ और वजह भी, और वो वजह थी कि कुछ और निगोशिएशन चल रही थी। ये बस फ्रंट लाइन में आ जाता है और अपनी क्या कहते हैं क्रेडिट ले जाता है, मगर ये काम उस तरह
1: आपको
2: के नहीं
1: पता है कि डेनमार्क में जो है ना फा की बातें अब मौजूदा बच्चे मानते भी हैं, लेकिन सियासी बच्चे भी नहीं मानते और अपने बच्चे भी फा की बातें नहीं मानते, वो अपनी मर्जी करना चाहते हैं।
2: यही बात है दादा साहब। देखिए अब आप गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, कल ये फिर बैठेंगे, मेरे ख्याल से तो फ्लो ब्लॉक की तो मुझे समझ भी नहीं आ रही कि बैठेगा कैसे, क्योंकि जैसे मैंने भी आपको पहले कहा कि मोर्टिमर स्मिथ ने जाते जब खोंग कोंटे में गया उसने साफ ही उधर कह दिया और लिख के भी वो आ गया, उसने कहा जो लिख के दिए एग्जाम्पल एक पार्टी का जो उसने लिख के दिए उसके ऊपर उसने साफ लिखा हुआ है कि सोशल डेमोक्रेट भी नहीं बैठ सकते, मुड़गाड़ा भी नहीं बैठ सकते। सबको मालूम है कि मुड़गाड़ा जो है लास्ट लोगे को की एक ही ख्वाहिश होती है वजीर आजम और गाड़ी। जब तुम लोगों ने पहले टेंस बॉल के पच्ची ने वो देनी नहीं है, मतलब समझे कि फ्लो प्लॉक तो गया, किस्म का फिनिश हो गया, उसके 10% चांस हो गए जिस तरह बंदा बात करता है। अब दूसरी बात रह गई कि जो जो क्या कहते हैं जो उसकी ख्वाहिश है उसके अंदर सोशल डेमोक्रेट का मसला ये है कि वो इनके साथ मिल जाए तो अगली बार से SF जो है ना इंग्लिश लिस्ट ने वो 8-10 और सीटें की ले जाए, तो मेरे ख्याल से अपना नुकसान तो नहीं ना करना कि मैं अपनी पार्टी तबाह कर दूं खाली गवर्नमेंट में बैठने के लिए, क्योंकि वो उसको तो ये भी तो पता है ना कि ये जो गवर्नमेंट है ये जिस तरह पोजिशन है, मैं सर ओपोजिशन में चली जाऊं तो 6 साल भर फिर इलेक्शन आ जाए तो मैं लोगों को जाकर बता सकूंगी कि मैं तो नहीं थी गवर्नमेंट में बैठी, मुझे सीटें नहीं थी चाहिए, मुझे ये नहीं पता है। रेड ब्लॉक उस वक्त बिग जीत जाए, क्योंकि ब्लू ब्लॉक लाना बड़ा मुश्किल है, जिस तरह उनके व्यूअर्स हैं आपको पता होगा, मैं आपको बात बता देता हूँ। एक जैसे मैंने अभी आपको मुसलमानों के बारे में कहा, उन्होंने अपने 15 एजेंडा में ये लिखा हुआ है और 23-25 का सबसे बड़ा डिमांड ये है कि एक मुसलमान अंदर आए एक बाहर आए, एक जो टाइटल्स जिसमें कुरान पाक का कानून है ये भी इस्तीफा किया जाए। उसकी ये चीजें जब डिमांड होंगी तो लास्ट लोगे की ऑपोजिट चीज है तो ये कैसे चलेंगे, तो ये तो लास्ट लोगे को अंदाजा होना चाहिए। लास्ट लोगे ये समझते कि मैं ब्लू ब्लॉक के पास जाऊंगा और प्रेशर डाल के वो पल गए कैंक बना लूंगा, वो भूल जाए, क्योंकि हर एक को अपना है। लास्ट लोगे तुम्हें शायद हो कि तुम नेक्स्ट इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे, तुम्हें अपने बस 4 साल हो मैं पेंशन पे चले जाऊं, ठीक है तुम पेंशन पे चले जाओ, बट वो फिर डिबेट वही आ जाता है कि तुम 6 साल की उम्र पे खुद चले जाओगे, लोग 80-80 साल की उम्र पे जाए, तो आप देखिए ना कि पॉलिसी गलत हो जाती है। तो ये अब देखते हैं कि कल निगोशिएशन शुरू होती है तो क्या क्या बनता है इसका नतीजा।
1: अजान आप जिस हल्के में आप हैं तो उस हल्के में भी बहुत सारी बातें हमें सियासी तौर पर सुनने को मिलती हैं, तो आप इन चीजों को किस तरह एनालाइज करेंगे?
2: चल साहब देखें, बिगेस्ट बात ये होती है कि जिस मर्जी हल्के में आप हो, आप 98 कमून में हैं और 98 कमून में अपने अपने काम चलते हैं। सबसे बड़ा तो इस वक्त जो टॉपर चला हुआ है वो यही है कि 98 कमूनों को मिसाल ये है कि नॉर्मली उनको करीबन इस मंथ उनके बजट का जो साली बजट होता है ना उसका नेगोशिएशन शुरू हो जाती है। तो इस वक्त जितनी कमूने हैं वो तो इंतजार कर रही है कि ये गवर्नमेंट बैठे और हमें पता चले हमारे पास कितने पैसे हैं और हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो ये भी देखिए ना कि एक किस्म का बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखा जाए तो हर कमून फंसी हुई है इस वक्त, और हर कमून के अपने खर्चे हैं, हर कमून के अपने इश्यूज हैं, हर कमून के अपनी चीजें होती हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, क्योंकि आज 47 डेज हो गए कि नेशनल गवर्नमेंट नहीं बनी, तो अब सारी क्या कहते हैं चीजों का असर पड़ रहा है और असरों को क्या कहते हैं देखेंगे। और क्योंकि इस बार ये भी तो था ना कि ज्यादातर जो कमूने थी वो जब बजट बनाती हैं तो वो एक पूरे साल का बजट बनाती हैं, और कुछ कमूने का बजट जो होता है ना, ये जिससे ये जो बाया आपड़ का बजट जिसका बनता है, उनका तो बजट पहले प्रेशर में हो गया था क्योंकि इस साल बर्फ ज्यादा पड़ गई थी। पहले तो वो बर्फ की सफाई का वो बजट अंदर डालते थे, पर वो भी उनको क्या कहते हैं दो उनने उनका करीबन पूरे साल का डाला हुआ था कि ये खर्चे होंगे। कुछ कमूनों का वो बजट उस वक्त ही पता चल गया था कि सितंबर अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, तो फिर उनको कोई बी प्लान सी प्लान ये करने पड़े थे कि पूरा साल तो गुजर जाए ना। तो इसीलिए वो अब आप इंतजार कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर का बजट कैसे आएगा, क्योंकि इस साल जो क्लाइमेट चेंज था वो तो जरा अनएक्सपेक्टेड आ गया था। जैसे आपको पता है कि 3-4 बर्फ के तूफान आ गए थे, नॉर्मल इतने तो काफी अरसे में नहीं आए, मगर इस साल 3-4 कट्ठे आ गए थे, तो फिर देखिए ना कि वो फर्क तो पड़ता है।
1: अदान, आखिर में हमारे सामान्य नाज़रीन को आप क्या पैगाम देंगे, सियासी हवाले से भी, लोकल हवाले से भी?
2: राज साहब, मैं लोगों को एक ही चीज कहूंगा कि अब आप प्लीज ध्यान देना, क्योंकि इस वक्त मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि हम मुसलमान एक टारगेट में हैं, और जब एक पार्टी ही पहली अपनी डिमांड करे मुसलमानों के बारे में, तो हम मुसलमानों को इस पर सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे जवाब देंगे और इस पर हम कैसे काम करेंगे, लोकल भी, नेशनल भी और कमिंग्स में भी, क्योंकि ये हमारे जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है।
1: अदान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
2: अल्लाह हाफिज।
1: समय नाजरीन, ये थे अदनान अमीन अली जो के तजिया निगार हैं, अपना तजिया पेश कर रहे थे। हमारा किसी के साथ मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, कोई बात करना चाहता है, अपना मैसेज देना चाहता है, अपना पैगाम देना चाहता है, इस पर बात करना चाहता है, उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है, हमारे साथ साथ रहिएगा।
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज आवाज दिल की म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूँ तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनज़र रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहुजूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

है। लेकिन सियासत जो असल में देखा जाए तो वो मुल्कों कौम की खिदमत करने के लिए सियासत की जाती है। जो उसकी कोई भी आप शक्ल आप ले लीजिए, कोई भी उसकी फॉर्म आप ले लीजिए, डेमोक्रेसी है या कोई और तरीका है सियासत करने का। लेकिन सियासत को अगर देखा जाए तो मुल्क और कौम यानी अवाम, मुल्क और कौम की खिदमत करने करने को सियासत कहते हैं, और ऐसा काम करने वाले को सियासतदान कहते हैं। सियासतदान का सबसे पहला जो एक दरबा होता है, जो सबसे पहला उसका जो टूल हथियार होता है वो ये है कि वो कैसे लोगों की हमदर्दी अपने लिए हासिल करता है, कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसका जो मंशूर है, उसका जो बोलने का अंदाज है, उसका उसके जो वादे वईद हैं, वो कैसे लोगों के अंदर हमदर्दी अपनी पैदा करता है। उसके मंशूर को देख के, उसकी तकरीर को सुन के, उसके वादों को सुन के कि आने वाले वक्त में मैं ये काम करूंगा, लोग उसकी तरफ मतवजा हो जाते हैं, लोग उसके सपोर्टर पहले बन जाते हैं, बाद में उसके कारकुन बन जाते हैं, बाद में उसके साथी बन जाते हैं, बाद में उनके कैबिनेट कैबिनेट मेंबर बन जाते हैं या कबीना के मेंबर बन जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि इस सियासत के यहाँ तक तो जो काम है वो बेहतरीन है कि मुल्कों कौम की आवाम की खिदमत करनी है और लोगों को अपने मंशूर की तरफ मतवजा करना है अच्छी अच्छी बातें करके। यहाँ तक तो सब बात ठीक है, लेकिन यहाँ से आगे जब हम लोग आम जो वोट देने वाले हैं, जो सबसे पहले उस सियासतदान के या सियासी जमात के बनते हैं खैरख्वाह, उसके प्रमोटर, उसके साथ तावन करने वाले, उसको वोट देने वाले की नियत कर लेते हैं इस दफा हम इसको वोट देंगे, उससे अगले स्टेप पे कुछ लोग उसके कारकुन बन जाते हैं, उसके जलसों में जाके कुर्सी ऐसी देखनी शुरू करते हैं, आवे आवे जावे जावे उसके पीछे गाड़ी दौड़ाना शुरू कर देते हैं, वो कारकुन जो है वो फिर सियासी रहनुमा बन जाते हैं, सियासी रहनुमा से उनको टिकट मिलती है, मेंबर पार्लियामेंट बन जाते हैं, कबीना कैसा बन जाते हैं। देखिए, जो मेहनत करेगा मुल्को कौम के लिए उसको तो फायदा मिले तो बेहतरीन है, लेकिन हालातों वाक्य ये हो चुके हैं कि रस्सागीर जो है इसमें ज्यादा शामिल होते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये तादाद 20% और 80% की होती तो काबिले बर्दाश्त थी, 30% 70% की होती काबिले बर्दाश्त थी, अनफॉर्चुनेटली ये तो 50% से ज्यादा रस्सागीर हो चुके हैं। बाकी बेचारे थोड़े से लोग हैं जो मुल्क कौम की आवाम की खिदमत करने के लिए आते हैं, जो अपने फवायद के लिए नहीं, अपने घर को कोठियों में और रेस्ट हाउसों में और बड़े बड़े फार्म हाउसों में कन्वर्ट करने के लिए, इंडस्ट्रीज बनने के लिए नहीं, वो सिर्फ लोगों की हमायत के लिए, लोगों के हालातों वाकई को दुरुस्त करने के लिए और मुल्क कौम का परचम को सर बुलंद करने के लिए आते हैं। और ये रेशो आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव होती जा रही है, और वक्त वो उस वक्त से हमें डरना चाहिए, खौफजदा होना चाहिए, आपके सुनने वालों को उसके ऊपर गौर करना चाहिए जो वोट कास्ट करते हैं, कि वोट कास्ट करने से पहले वो किसी बाजार से कोई सब्जी लेने चले जाएं तो उसको उठा उठा के देखते हैं, बार बार चुनते हैं, कोई घर में पेट पालने के लिए लेके चले जाएं तो उस पेट के बारे में बड़ी बड़ी बड़ी तहकीक करते हैं, इसका खानदान क्या था, नस्ल क्या था, इसके दांत कैसे हैं, इसके फलां क्या है, ठीक है। लेकिन जब सियासतदान सियासत में आप आते हो, मेरे जैसे लोग भी अंधाधुंध जो तकलीद करते हैं, तो इस बारे में जब तक अवाम की सोच बेहतर नहीं होगी, जब तक अवाम ये नहीं सोचेंगे कि हम गलत कर रहे हैं, तब तक ये हालातों का क्या ठीक नहीं होने। हाल बता जिस तरफ का इशारा आपने किया कि सियासतदान फिर जब गैर मुतलका लोगों को, जिन्होंने कभी कोई मेहनत भी नहीं की होती, उन पैराशूटर को जब जब अपना मुकाम दे देते हैं, तो वहां भी कल्ट्स काम आती हैं। अपना मेरे मोहतरम राजा साहब, वहां भी कल्ट्स, और कल्ट्स के पीछे से जो बैठे हुए जो बड़े बड़े जो कड़ियां लड़ियों को हलाने वाले, इनकी इनकी तन, तन, तन, पीछे से इनको बना के शोभदाबाज जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। किसी का सफारशी लेटर आ जाता है, किसी का फोन आ जाता है, किसी की अचानक सिफारिश आ जाती है, कोई कोई बहुत बड़ा बैंक उसकी सिफारिश कर देता है, कोई बहुत बड़ी तंजीम उसकी सिफारिश कर देती है, कोई इंटरनेशनल लेवल से कोई जो रिलेशनशिप है वो उसकी सिफारिश कर देती है, वो पैराशूट की तरह नाजल हो जाते हैं। तो यहाँ भी आके अगेन वही बात राजा साहब जो मुझे और आपको तकलीफ देती है कि कल्ट फिर दोबारा कार फरमा होती है। यहाँ आके उस सियासी जमात के जो बड़े हैं, सियासी जमात के जो रहनुमा हैं, उनको ख्याल करना चाहिए कि जो पाकिस्तान के जो मुल्क और कौम के खैर ख्वाह हैं उनको छोड़ के इन दगड़ दगड़ के दलालों को क्यों वो मौका दे देते हैं, क्यों अपनी जगह अपने स्पेस बनाने का मौका दे देते हैं। और ये कल्ट जो है इन्हीं बहानों से, इन्हीं हीले बहानों से, इन्हीं पैराशूट के जरिए से आपके डिपार्टमेंट्स के अंदर, आपकी अदलिया के अंदर, आपके पार्लियामेंट के अंदर, आपकी सियासत के अंदर, आपके अफवाज के अंदर, आपकी सहाफत के अंदर, ये कल्ट के अपने एजेंट जो है वो इंडक्ट कर देते हैं। और एक दफा इंडक्ट होने के बाद, क्योंकि
मैनू माल दिखा, तेरा मेरा मूड बने, पैसा जो है फिर पहियो लगते हैं नीचे, केस के ऊपर पहियो लगते हैं, ये कट्स

0: का इन देश में, पीछे अपना धंधा लेके आते हैं, पीछे अपना धन लेके आते हैं, पीछे विस्फारी लेके आते हैं, ये फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं और एक वक्त आता है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ये माफिया बन जाते हैं।
1: आपने बड़ा अच्छा इसका तजिया किया, बल्कि पोस्टमार्टम किया। शाकर साहब, ये पिछले जो चंद माह चल रहे हैं अपना अमेरिका और ईरान के तालुकात पर, डेफिनेट आपकी गहरी नज़र है। पाकिस्तान को मेज़बानी का मौका मिला, इन्होंने जोड़ने की कोशिश की, सुलह कराने की पूरी पूरी कोशिश की और अभी तक कोशिश कर रहे हैं, और दुनिया में बड़ा नाम है पाकिस्तान का, फौज का, आसिम मुनीर साहब का। यूरोप कभी इस तरह किसी की तारीफ नहीं करता। पहले कहते थे कि यूरोप जब किसी की तारीफ करे तो उस मुल्क का होता नहीं है, लेकिन अब जो हकीकत हमें सामने नजर आई है, जो कुछ हमें देखने को प्रैक्टिकली मिल रहा है, तो शाकर साहब इन चीजों को आप किस तरह देखते हैं?
0: राय साहब, तो बहुत ही शानदार एक वक्त गुजरा है और हमने यहाँ सोशल मीडिया की दुनिया में इस्तेहकाम पाकिस्तान ओवरसी फॉर्म और कारवाने फिक्र के प्लेटफॉर्म को लेके इसकी बुनियाद पे इसके जरिए तमाम, आज भी अभी आपसे बातचीत करूंगा तो 4:30 बजे बरतानिया टाइम, 8:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ट्विटर के ऊपर फिर दोबारा हमारी स्पेस है, इन्हीं चीजों को लेकर हम डिस्कस करते रहते हैं। पिछले साल हम ये चीज डिस्कस कर रहे थे कि हमारे उम्मत के इब्राहिम की तलाश जो है वो जो बहुत जरूरी हो चुकी है, खलीज का मुत्तहिद हो जाना वो जो बहुत जरूरी हो चुका है, खलीज के दरमियान जो खलीज पैदा हो चुकी है उसको खत्म करना बहुत जरूरी है, ये तमाम 57 इस्लाम मालिक जो है इनका इकट्ठ हो जाना, मुत्तहिद होना बहुत बहुत जरूरी है, ये सारे के सारे मुस्लिम मालिक जो है छोटे हैं, बड़े हैं, कमजोर हैं, ताकतवर हैं, ये आखिर इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे, सब ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद क्यों बना रखी है, हमने ये आवाज बुलंद की, पूरा पूरा महीना हमने उसके ऊपर स्पेसिस की, बहुत दूर तक वो गई, हजारों की तादाद में लोगों ने हमारी स्पेसिस को अटेंड किया, आज भी कर रहे हैं, कल भी की थी, कल बलूचिस्तान के हमारे आए हुए थे हमारे एक स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के, आज भी इंशाल्लाह मेहमान तशरीफ लाएंगे। हमने ये अलम बुलंद करके रखा हुआ है कि जो कुछ इस वक्त मुस्लिम दुनिया में हो रहा है हमारे मुस्लिम मालिक की अपनी गलतियों कोताहियों की वजह से हो रहा है, लेकिन अब ये वक्त आ चुका है, अब हमें मजीद और कोई गलती नहीं करनी, और इसका नतीजा आज ये निकला है कि हमारे मुस्लिम ममालिक के दरमियान अब ये बात जोर पकड़ चुकी है कि एनफ इज एनफ, अब हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए, अब हमें अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहिए, अब हमें किसी को आप अपना लीडर मान के उसके पीछे लगना चाहिए। तो आज आपने जो ईरान और अमेरिका की जंग की बात की, हरगिज इसमें जो लोग ये समझते हैं कि अमेरिका इसमें कामयाब हुआ है, हरगिज कामयाब नहीं हुआ, अमेरिका को बुरी तरीके से शिकस्त हुई है, अमेरिका को हर दफा शिकस्त हुई है, इस दफा भी शिकस्त हुई है और शिकस्त बड़ी बड़ी ही तकलीफ दे शिकस्त उसको हुई है, कहाँ वो मुल्क को मस्मार करने आया था, कहाँ वो इस पूरी सिविलाइजेशन को तबाह बर्बाद करने आया था, नो डाउट उसने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन सिर्फ इसलिए नुकसान पहुंचाया कि ईरान के हाथ और पांव बांध रखे हुए थे, 50 सालों से ईरान के हाथ और पांव बांधने के बावजूद उस बंधे हुए हाथों के साथ, उन बंधे हुए पैरों के साथ उसने आपको मुकाबला करके दिखाया, ना ही वो सिविलाइजेशन को तबाह कर सका, ना ही वो मुल्क को तबाह कर सका, 20 लाख ईरानियों ने अपने नाम जो पेश कर दिए हैं, रजिस्टर अपने आप को करा दिया है कि अमेरिका की जंग के खिलाफ हम खड़े हो जाएंगे, हमें शहादत कबूल है, हम अपने मुल्क को जो है सरनगू नहीं होने देंगे। ईरान का हर शख्स जो है जो जो जो इस वक्त ईरान को ईरान की हिफाजत कर रहा है, उनकी आंखों के अंदर आप जोश देख लीजिए, उनके चेहरे के ऊपर आप एक जज्बा देख लीजिए, उनके बयानात के अंदर एक हौसला देख लीजिए, लेकिन मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो वहां 35-40% जो कल्ट का हिस्सा बन चुके हैं, जो ईरान के अंदर इस्लाम नहीं चाहते हैं, जो ईरान के बजाय जो ईरान की हुक्मरानों की बजाय अमेरिका नवाज है, जो जो इसराइल नवाज है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं यहूदी नवाजों की या हिंदुत्व नवाज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी जो बाकी बचे हैं उन्होंने ऐन उस वक्त जब उनके सरों के ऊपर बम बरसाए जा रहे थे, उन्होंने खुले मैदानों में खड़े होकर साबित कर दिया कि हमें किसी अपने मौत की कोई डरो खौफ नहीं है। आज वो इतनी बड़ी ताकत जो कि दुनिया भर को अपने दुनिया भर को ब्लैकमेल करती है, जंग के अंदर झोंक देती है, इजराइल और अमेरिका दोनों इस वक्त शिकस्त खोरदा है, दोनों के मुल्क के अंदर बहुत पहली दफा ऐसे हुआ है किसी ने हमला किया है, हमले का जवाब दिया है, उन मुल्कों के अंदर भी मिसमार किए गए हैं, इमारतों कोरों को बर्बाद किया गया है, उनके नेटवर्क को बर्बाद किया गया है, उनके अमेरिकन उनके फौजी सिस्टम को बर्बाद किया गया है, उनके आर एन डोम को बर्बाद किया गया है, उनके सेफ्टी को बर्बाद किया गया है, उनके बंकर को बर्बाद किया गया है, उनके बड़े बड़े जो नेतन्याहू जैसे बड़े बड़े जो उनके खानदान के हमले किए गए हैं। आज अमेरिका पहुंचा है तो कहाँ पहुंचा है, बेशक पाकिस्तान की जो मीडिएशन की वजह से पहुंचा है कि आप नए हर्मज के ऊपर वो कहता है कब्जा मेरा होना चाहिए, मेरी मर्जी के बगैर वहां कोई जहाज ना आगे पीछे ना जाए। ये क्या जंग है, ये कहां से उसने चलाई और कहां पहुंची, और आज से चंद हफ्तों के बाद यहां से भी वो पीछे हटेगा। नो डाउट इस वक्त एन एस जब मेरी और आपकी बात हो रही है, मेरे मुंह में खाक, खबर ये है, मालूम ये है, कड़ी से कड़ी की जोड़ू तो आइंदा चंद दिनों में फिर दोबारा बहुत बड़ा हमला, शदीद किस्म का हमला ईरान के ऊपर हो सकता है, और उसके लिए इसराइल ने पिछले ये चंद दिनों में जिन दिनों में ये बंद की गई, जंग बंद की, उसने अपने आप को फिर दोबारा उसने अपने आप को इकट्ठा किया है, उसने अपने वसाइल में, जंगी वसाइल में उसने इजाफा किया है। खबर ये है कि उसने सारे इसराइल के अंदर उसने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उसने असला इकट्ठा कर लिया है, मिसाइल इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन ईरान के सामने वो नहीं खड़े हो पाएंगे। ये मैं आपको आज बता देता हूँ, ईरान की मदद के लिए, अल्लाह की मदद के अलावा बेशुमार मुल्क उसकी मदद के लिए खड़े हो गए हैं। अमेरिका की मदद के लिए कोई नहीं आया, इसराइल की मदद के लिए सिवाय इंडिया के वो कोई नहीं आया, लेकिन इंडिया का मोदी भी सिर्फ मदद कर सका तो उसको जाके अपना बाप बना के इंडिया को उसने माँ बना दिया, मदर ऑफ बना दिया, उसको बाप, इसको मदर, और अल्लाह ताला माफ फरमाए, नफरत की हद तक उसके अपने लोगों ने इससे नफरत की है कि तुमने जाके इसराइल को अब हमें इंडिया को माँ क्यों बनाया, उसको बाप क्यों बनाया। तो ये नफरत का इंतहा जो है अमेरिका के हिस्से में आई है, इंडिया के हिस्से में आई है, उसके इसराइल के हिस्से में आई है, और ये वक्त साबित करेगा कि आज जितना असला अगर अमेरिका ने दोबारा इकट्ठा कर लिया है, इसराइल ने अपना सारा इसराइल जो है अपना डिपो बना दिया, असले का डिपो बना दिया है। तो याद रखिए ईरान के पास वो सोफिस्टिकेटेड जो ड्रोन हैं, उस असले के डिपो को जाके बड़ा आसानी उसको उसको तहस नहस कर देंगे। आने वाला वक्त इसको बताएगा, लेकिन आज तक इस वक्त तक जब हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, ईरान जो है वो फातेह है। कैसे फातेह पाकिस्तान हुआ इंडिया के खिलाफ, आज ईरान ने साबित किया इतनी बहुत बड़ी माइट के खिलाफ खड़ा होके उसने शिकस्त नहीं होने दी अपने मुल्क की, अपने सिविलाइजेशन की, अपने लोगों की। अल्लाह ताला का ये फजल करम का जारी और सारी रहे। उम्मते मुसलमा के अंदर जो होने वाली गलतियां कोताहियां हैं, अल्लाह ताला
1: इन शाकर साहब पाकिस्तान कहाँ खड़ा है?
0: पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से ईरान के साथ खड़ा है, और एट द सेम टाइम ईरान की जंग के साथ साथ अफगानिस्तान की जंग इस वक्त भी लड़ा है। कल रात को भी वहां हमले हुए, परसों रात को भी हमले हुए, मुसलसल ईरान पाकिस्तान को ईरान के साथ अफगानिस्तान के साथ जंग करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ उनके जो उनका जो सिंदूर था, उस सिंदूर के हमले को तबाह बर्बाद करके आज हम 1 मई से लेकर 10 मई तक हम मुसलसल जश्न मना रहे हैं, जश्न बनियान और मसरूर मना रहे हैं। इस पर सारा पाकिस्तान, फौज पाकिस्तान, पाकिस्तान की हुकूमत, हमारे वजीर आजम और हमारे फील्ड मार्शल जो है ना, पूरी कौम को लेके जश्न मना रहे हैं और हम उनका साथ दे रहे हैं। हमने यहाँ स्पेस की दुनिया में, इंटरनेट की स्पेस की दुनिया के ऊपर 1 मई से लेके मैंने अपने साथियों के साथ ऐलान कर रखा है कि हम जश्न बनियान और मसरूर मनाएंगे, और हमारा जो मार्का है जो है वो मुसलसल चल रहा है। कभी वो अफगानिस्तान की अगेंस्ट हमारा मार्का हक चल रहा है, कभी हम बलूचिस्तान में इंडिया के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, इधर से हम ईरान की मीडिएशन करके वहां भी हमारा पूरा पैरा है अल्लाह ताला के फजल करम से। पाकिस्तान में इस वक्त हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने जो फतह हासिल की पिछले साल मई में, आज एक पूरा साल गुजर गया है, आज हम सालगिरह मना रहे हैं, आज हम जश्न मना रहे हैं, पूरा पाकिस्तान और आपके सुनने वाले जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है वो इस जश्न का हिस्सा बन जाएं। और जो लोग किसी वजह से, किसी कल्ट की वजह से वो जो नहीं बनना चाहते, तो वो भी कोई बात नहीं, अपना किरदार जारी रखे, हमें उनकी कोई परवाह नहीं है। कोई हिंदुत्व के साथ मिलके, मोदी के साथ मिलके, यहूदियों के साथ मिलके, अमेरिका के साथ मिलके कोई पाकिस्तान के खिलाफ अर्जासराई करना चाहता तो करता रहे, हमें उनकी कोई परवाह नहीं है। वो मेरे ख्याल के मुताबिक, मैं वो अल्फाज यहाँ आपके रेडियो पे नहीं बोल सकता हूँ, मेरे ट्विटर के मेरे अकाउंट पे जाकर देख लीजिए, मैं जो लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल करता हूँ सादा लफ्जों में, दगड़ दगड़ के दलालों का इंशाल्लाह मुकाबला हम कर लेंगे। जो दगड़ दगड़ में चाके रखने वाले लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम उम्मा के अंदर हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर या बाहर हैं, उनका इंशाल्लाह बहुत बुरा अंजाम होगा अल्लाह ताला के फजल करम। ये रहे साहब,
1: शाकर साहब, पाकिस्तान में बड़े काम हो रहे हैं जो हम देखते रहते हैं अखबारात में, मीडिया पे देखते हैं। स्पेशली अगर मैं पंजाब की बात करूं, जो चीज़ें हम खुद जानते हैं, ज़ाती तौर पर जानते हैं, बड़े बड़े मनसूबे हैं, अरबों खरबों के मनसूबे हैं, और कोई इख्तलाफ नहीं हो रहा। शुरू में लोगों ने किया, मैं अगर पिंडी शहर की बात करूं, जो पुल बन रहे हैं, चीजें अंडर पासिस बन रहे हैं, सब जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद चेक एंड बैलेंस क्या होगा? मंसूबे सारे अच्छे हैं, मुकम्मल भी टाइम से हो रहे हैं, वक्त से पहले मुकम्मल हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो जिसे कहते हैं आप, वो क्या रगड़ दल्ले जिन्हें आप कहते हैं, कट्स कहते हैं, फिर उस निज़ाम को, वो चीज़ों को तबाह करने के पीछे पड़ जाते हैं। इसको कौन रोकेगा? देखे ना, बरतानिया में सड़क बनती है तो उसका चेक एंड बैलेंस है, फिर बनेगी, फिर ठीक होगी, हर वक्त वो ठीक करते रहते हैं चीज़ों को, लेकिन इसका जो है बैकअप क्या होगा?
0: हमारे पाकिस्तान के अंदर इन तमाम अच्छे काम जो हो रहे हैं मुसलसल हो रहे हैं, और अगर आप मुझे इजाजत दें मैं आपको बताऊं कि आज इस वक्त पाकिस्तान जो है सऊदी अरेबिया के साथ दिफाई पैक्ट करने के बाद हमारी पूरी ब्रिगेड जो है सऊदी अरेबिया के हरमैन शरमैन की हिफाजत के लिए पूरी अपनी ताकत, अपनी माइट के साथ, एयरफोर्स के साथ, तैयारों के साथ, टैंकों के साथ वहां पहुंच चुकी है। उसके बाद ये बिल्कुल हो चुका है, फैसला हो चुका है। इराक ने हमें दावत दी है, हम वहां भी सेम उस तरीके से दिफाई पैक्ट में जा रहे हैं, और उसमें उसके बाद इराक ने खुद पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तान इराक के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस बनाए पूरा। हमें हमसे उन्होंने जेएफ थंडर का फ्लीट मांगा हुआ है। राजा साहब, दुनिया के कौन से ममालिक हैं इस्लामी दुनिया के अलावा भी, चीन और चीन के अलावा दीगर जो दूसरे नॉन मुस्लिम ममालिक हैं, अलजजायर ने, मराकश ने, सोमालिया ने, सूडान ने, बरतानिया ने, चाइना ने किया 4-5 दफा, बांग्लादेश ने, तुर्किया ने, जी ये ईरान ने, किस किस मुल्क का मैं आपको नाम लूं जिन्होंने तराने बना के नशर कर दिए हैं, अमेरिका से इंग्लिश के अंदर तराने बन के पाकिस्तान के नशर हो रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के लिए, जिनके खिलाफ इन दगड़ दगड़ के दलालों ने बेनतहा हरदा सराई की, बेनतहा बेहरमती की। आज अमेरिका का जो सुपर पावर अपने आप को समझता है, उसका जो सदर है वो बार बार पाकिस्तान की तारीफें करता है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तारीफें करता है, वही मुल्क जहां इन दगड़ दगड़ के दलालों ने फील्ड मार्शल आसम मनीर के खिलाफ वहां बेनतहा हरदा सराई की, बेनतहा दर्दनाक किस्म की, जो क्या गजबनाक किस्म की, जिससे हमारी हमें बेचैनी बेशुमार होती थी, उनके हाथों के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर खून लगा के, वहां मोबाइल ट्रकों के ऊपर उनके वीडियो चलाए गए, बगैरती की इंतहा की गई, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान की हरदा सराई की गई, पाकिस्तान के खिलाफ फैसले करवाए गए, पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट है उनको बंद करने की कोशिश की गई। आज वही शहबाज शरीफ, आज वही फील्ड मार्शल आसम मनीर ख्वाजा पाकिस्तान, हमारा एयर चीफ जो है वो अल्लाह ताला के फजल करम से जहां दुनिया में जाते हैं, चाहे वो मिस्र है, चाहे वो इराक है, चाहे वो लीबिया है, चाहे वो कुवैत है, चाहे वो बहरीन है, चाहे वो मस्कत है, चाहे वो यूएई है, चाहे सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, चाहे वो सूडान है, चाहे वो जहां जहां का भी आप नाम लें, मुझे बताएं कहां कौन सा मुल्क है जिस मुल्क में हमारी हमारी बावका तरीके से हमारी हमारा वेलकम नहीं हो रहा। आज से चंद महीने पहले, 2-2.5 साल पहले एक दगड़ दगड़ के दलाल जो थे पाकिस्तान के पासपोर्ट फाड़ के आग लगा के फेंका करते थे और गालियां निकाला करते थे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के पासपोर्ट को, अफगानों के साथ मिलके और हिंदुत्व के मोदियों के साथ मिलके, बगैरतों के साथ मिलके, आज उसी पाकिस्तानी पासपोर्ट को लेके जो गैर पाकिस्तानी है, जो गैर मुस्लिम है, जो दूसरे मुल्कों के लोग है, वो अपने पासपोर्ट के साथ जोड़ के पाकिस्तान, अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट की तस्वीरें बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, कहते हैं पाकिस्तान इज द बेस्ट कंट्री। राजा साहब, इससे ज्यादा मैं आपको और क्या बताऊं कि इंडिया के अंदर, इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उनके पार्लियामेंटेरियन जो मोदी के मुंह पे थप्पड़ मारे, बेशमार थपेड़े उसको पड़ रहे हैं, और उसको कहा ये जा रहा है तुमने ये संदूर किया तो क्यों किया, वहां पार्लियामेंट के अंदर खड़े हुए लोग जो हैं, और उसका जो गोदी मीडिया है उसके अंदर जो आप बात देखिए क्या हो रही है, गोदी मीडिया के अंदर इतनी बड़ी करवट आई है कि मीडिया के अंदर लाइव टेलीकास्ट के अंदर कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है तो दूसरे को रोक देता है, खबर दे बकवास बंद करो, झूठ मत बोलो। वहां के व्लॉगर जो है इंडिया के, वहां के अंदर के ये कह रहे हैं कि हमें आज तक ये गलत सबक पढ़ाया गया, पाकिस्तान के खिलाफ बिला वजह हमें दुश्मनी करवाई गई, ये पाकिस्तान तो इंतहाई अच्छा मुल्क है, और हमने आज तक जितने भी पुलवामा से लेके पहलगाम से लेके हमने वो ताज होटल तक जितने भी सारे कराए, सारे के सारे उन्होंने खुद कहा, इंडिया के लोग कह रहे हैं कि ये सारे के सारे फॉल्स फ्लैग थे, उनकी फिल्में जो थी उनके गले का तोक बन गई, उनकी उरी फिल्म जो थी उनका गले का तोक बन गई, उनकी ये दुरिंदर फिल्म भी थोड़े दिन पहले जो बनाई है उनके ऊपर उनको गालियां पड़ रही है, उनके बहुत बड़े बड़े सहाफी जो है वो बना रहे हैं। मैं थोड़े दिन पहले उनके लेफ्टिनेंट जनरल, आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड का मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था हमने बहुत गलती की और पाकिस्तान हमसे बहुत आगे जा चुका है, ये अल्फाज जो हैं पाकिस्तान के किसी शख्स के नहीं है, और मुझे अफसोस होता है राजा साहब, मेरे समेत, आप समेत, हम अपने पाकिस्तान की इस फतह को कोई सेलिब्रेट नहीं कर सके। हम वहां से वो गोबर आर्या जैसा एक शख्स जो था, वो बख्शी जैसा एक, वो बड़ी मूछों वाला एक जनरल जो था, बैठ के वहां से बैठ के पाकिस्तान को गालियां निकाले करते थे। आज उनके चैनल के लोग उनको गालियां निकाल रहे हैं कि तुम बदबख्त हो, तुम बेगैरत हो। अभी थोड़े दिन पहले एक खातून ने वहां बैठे लाइव शो में कहा कि इस गोबर आर्या को इंडिया के मिसाइल के साथ बांधो और इसको इसराइल की तरफ फेंक दो, ये जहां वहां जाके फटे जाके। ये इस कदर शदीद नफरत वहां इंडिया के अंदर से उठी है हमारे बनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद, उनके जो सुरेंद्र संदूर था उसकी नाकामी के बाद, और आज वो जख्मी सुवर की तरह वो करवटें बदलते हुए फिर दोबारा पाकिस्तान को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वीडियोस बना के कहते हैं ये हमारा संदूर खत्म नहीं हुआ, पाकिस्तान पे हमला दोबारा करेंगे। करो आज हमला, मेरी आज की स्पेस का टॉपिक ये ललकार है, हम तुम्हारा तहस तहस करके रख देंगे, हम सीसा पलाई दीवार है।
1: शाकर साहब अपने टाइम इजाजत नहीं दे रहा, हमारे पास दो मिनट हैं, थोड़ा सा मुख्तसर जवाब दीजिएगा। शाकर साहब, जो हमारे साबका वजीर आजम ट्रंप से मिलकर आए थे तो वापस आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमने दोबारा वर्ल्ड कप जीता है, उनका अब चूंकि वो जेल में इस वक्त उनका मुस्तकबिल क्या है?
0: मैं लानत बेशुमार भेजता हूँ इसके ऊपर अपने अपनी जुबान खोलने की बजाय। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आज इस वक्त चाइना की मदद से हम आप दोस्त हासिल कर चुके हैं और अगली दोजे हमारे पाकिस्तान के अंदर वो बनाई जाएंगी। जेएफ थंडर 17 के बाद हमें F-35 मिलने जा रहे हैं अमेरिका वहां तुर्किया से, कान का तैयारा जो है वो हमें मिलने जा रहा है, और कान के तैयारी की पूरी फैक्ट्री पाकिस्तान आ रही है, आप दोजों की फैक्ट्री पाकिस्तान लगने के लिए शुरू होने जा रही है। तुर्किया ने हमें दो बहरी जहाज स्टेट ऑफ द आर्ट बना के दिए, तीसरा बहरी जहाज पाकिस्तान के अंदर बनने जा रहा है। चाइना ने हमें अभी थोड़े दिन पहले नेवी को हमारा बहुत बड़ा एक बहरी जहाज बना के दिया, दूसरा भी बना के देंगे, लेकिन दूसरा बहरी जहाज जो बनेगा पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्री उसकी लगेगी। पाकिस्तान ने, ईरान ने और तुर्किया के साथ मिलकर आप हमारे ड्रोन्स का बनाने की एक नई फैक्ट्री यहाँ लगाने का प्रोग्राम बनाया है। पाकिस्तान इस वक्त सैटेलाइट के जरिए से स्पेस में जा चुका है, तीन हमारे सैटेलाइट वहां का इस वक्त काम कर रहे हैं। हमारे दो जो एस्ट्रोनॉट हैं वो चाइना की मदद से खला में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में हमारे पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ने अनाउंस कर दिया है कि हम अनकरीब अगले 5-7 सालों में चांद का मिशन भी हम अनाउंस करने वाले हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के लिए शानदार किस्म के जो प्रोजेक्ट हो चुके हैं, हमारे सऊदी अरेबिया के साथ रेगिस्तान को वहां कन्वर्ट कर दिया गया है ज़राअत के अंदर, वहां टनल के जो जो हार्वेस्टिंग हो रही है वहां वो कामयाब हो चुकी है। चाइना ने हर एकड़ जमीन SIFC के जरिए से लेके वहां प्रोडक्शन शुरू कर दी है। अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान, चाइना और कोरिया के साथ हमारा जॉइंट वेंचर जो बना है वो आइंदा आने वाले दिनों में बेहतरीन ज़राई टूल जो है वो दोबारा पाकिस्तान की काश्तकारी में लेके आ रहे हैं, छोटे टूल्स और साथ हमारे रोबोटिक जो ऑपरेशन होने शुरू होने जा रहे हैं। पाकिस्तान अपने बीज अपनी खादें बनाना शुरू करने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री लग गई है, सेमी कंडक्टर बनाने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान ने अपने नाम के साथ, मेड इन पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के अंदर अपने टीवी, अपने फ्रीजर अपने एयर कंडीशन बनने की फैक्ट्रियां लग चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर 40 जगहों के ऊपर तुर्किया को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, कोई 40 जगहों पे ऊपर उनके बहरी जहाज आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, समुद्र के अंदर और जमीन के अंदर वो गैस और तेल जो निकालने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। हजारों नहीं लाखों की तादाद में जो क्वांटिटी है वो गैस की और पेट्रोल की जो कुएं वहां जो नए खुद रहे हैं। गूगल पे सर्च करना शुरू कीजिए पाकिस्तान के अंदर किस कदर शानदार काम किए जा रहे हैं। राजा साहब, चंद महीने पहले, 2 साल पहले आपके स्पेसिस के अंदर यहाँ कहा जाता था कि पाकिस्तान टुकड़े होने जा रहा है, कहा जाता था पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होगा, नहीं हो चुका है, कहा जा रहा था पाकिस्तान का हाल जो है श्रीलंका से बुरा होगा। आज ये सारे के सारे मुल्क पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने के लिए बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से आपके अजली दुश्मन, दुनिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन आका इंडिया है, वो सर झुका के पड़े पड़े बैठा हुआ है। इसराइल आपसे खौफजदा है, हमने अल्लाह ताला के फलो क्रम से सूडान को भी F-35 दे दिए, हमने अजरबैजान को भी दे दिए, हमने सोमालिया को भी दे दिए, हमने तुर्किया को भी दे दिए, हमने इंडोनेशिया को भी दे दिए, हम इस वक्त कतर के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारे पीछे इस वक्त इराक आया हुआ है, हमारे पीछे इस वक्त अपना बांग्लादेश आया हुआ है।
1: शाकर साहब आप टाइम बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा, ये सारी चीजें अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन एक जो होता है ना वो ईमानदारी की फैक्ट्री कब लगेगी?
0: ईमानदारी की फैक्ट्री हम अगले प्रोग्राम फिर लगा देंगे, क्योंकि मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा।
1: बहुत शुक्रिया शाकर साहब, आपने कीमती टाइम हमें दिया।
0: जज़ाकअल्लाह खैर। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, अफवाजे पाकिस्तान जिंदाबाद
1: जिंदाबाद। सामान नाज़रीन, ये थे शाकुर कुरैशी साहब जो के फ़ज़ाओं में हमारे पास साथ बात कर रहे थे। बड़ा खुल कर तजिया करते हैं, बोर्ड बोलते हैं और अपनी राय रखते हैं, और अपनी राय को जो है वो कहने में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। सब नाज़रीन, हमारा किसी से मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं है, कोई जवाब देना चाहे, बात करना चाहे, तो उसके लिए दारा आपकी आवाज़ का टाइम जो है वो हाजिर है, वो आ सकता है।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामान, जिस तरह हमने इंट्रो में कहा था कि हम लोकल बात करेंगे, चूँकि हम लोकल प्रोग्राम्स करते हैं, इंटरनेशनल बात भी करते हैं, चूँकि उसमें हमारे मुल्क के मफादात होते हैं, चलना पड़ता है, लेना पड़ता है, इन चीज़ों को भी साथ साथ लेना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे नौजवान हैं जिन्हें आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। मैं उनको कहता हूँ उस्ताद हैं, वो वाकई उस्ताद हैं, टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम होते हैं और घर में पता चलता रहता है कि बच्चे क्या करते हैं। ज़ाहिर है टीचरों की बातें तो चलती रहती हैं। तो ज़ीशान, एक बार फिर आपको अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब। सलाम अलैकुम आपको और सब सुनने वालों को भी। उम्मीद करते हैं कि सब खैर खरीद से होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। आज चलें, धूप इतनी नहीं निकली,
1: आज धूप इतनी ज्यादा नहीं है, बस धूप ठंडी है। टेम्परेचर तो ठीक है लेकिन धूप नहीं है, मौसम ठीक है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, छुट्टी का दिन भी है। लेकिन आप लोग काफी मसरूफ रहे, बच्चों के इम्तहान, ज़ाहिर है उस्तादों को, टीचरों को तैयारी करानी पड़ती है। तो ये आपका महीना कैसे गुजरा?
2: ये महीना जी, ये आप देख सकते हैं कि ये वाला महीना बिल्कुल पॉलिटिक्स, अप्रैल का महीना, मतलब मार्च का महीना जितना पॉलिटिक्स के साथ गुजरा है, अप्रैल का उतना ही उसके बगैर गुजरा है। क्योंकि वैसे भी पॉलिटिकल माहौल भी जरा ठंडा ठंडा चल रहा है जैसा कि आपको पता है, मगर मेरा जो जिस तरह आपने बताया, ये वाला महीना बिल्कुल एग्जाम्स की तैयारी कराने में बच्चों को लगा हुआ था। कल से माशाल्लाह नौवीं क्लास, जितने नौवीं क्लास है सबके, नौवीं दसवीं क्लास वाले, उनके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो और मुल्क भर में होंगे, तो वो मेरी भी दो क्लासेस हैं, उनको भी हैं, बाकी भी मैं साथ बच्चे पढ़ा रहा होता हूँ साथ साथ। ट्यूशन का थोड़ा सिस्टम आपको पता है साथ चलता है। तो मैं तो बस पूरा अप्रैल का महीना पढ़ाने में मसरूफ रहा हूँ, तैयारी कराने में मसरूफ रहा हूँ। क्योंकि आपको जैसे पता है कि नौवीं क्लास के एग्जाम्स मतलब मेरे लिए तो बड़े मायने रखते हैं, क्योंकि ये पहली दफा ऐसा होता है मतलब पूरी स्कूलिंग सिस्टम में या आठवीं नौवीं क्लासों में जहाँ हमारे बच्चे इधर एग्जाम्स देते हैं। मतलब यहाँ से उनके एग्जाम्स का मैं कहता हूँ एक सफर शुरू होता है, कि ये उनके पहले पहले एग्जाम्स होते हैं और उसके बाद फिर आगे एग्जाम्स चलते ही जाते हैं जब तक वो कोई एजुकेशन खत्म ना कर लें। तो बहुत बड़ा, बहुत शानदार पीरियड होता है ये, बड़ी तैयारी कराई जाती है बच्चों को। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह सब बच्चे अच्छा करेंगे, आगे भी कामयाब करे अल्लाह सबको।
1: चलें, ये तो लगा रहता है चूंकि आप खुद हैं, आपको पढ़ाने का शौक भी है, लेकिन इसके साथ साथ आप एक सियासतदान भी हैं और आपकी हुकूमत भी बनने जा रही है। आपकी पार्टी इन दिनों में या इस पूरे दो डेढ़ दो महीने में जब से इलेक्शन हुए हैं, हुकूमत अभी बनी नहीं, लेकिन आपकी जो लीडर हैं वो बिल्कुल खबरों की वो सुर्खियों में रहे, कभी वो गुम भी हो जाते हैं, जिस तरह गैर हाजिर भी रहे, पता चलता था किसी ने उनको अगवा कर लिया, सियासी अगवा कर लिया। जरा कहानी तो सुनाए हमारे सामने नाजरीन को।
2: हाँ जी, कहानी यही है, हमारी भी मीटिंग हुई थी, मतलब मेन बोर्ड की भी मीटिंग हुई थी, उसमें भी पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते होनी थी एक, वो फिर इस पिछले एक हफ्ता डिले हो गई। क्योंकि वो ये कि प्रोसेस जो मेरे फॉलिक्स ने और मुर्गार ने, सुशील मुखार ने, मुर्गार ने का जो उनसे चाह रहा है, वो मतलब मेरे ख्याल से हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि जिस तरह हम सारे बात करते हैं ना कि मेड़े और लोके के बगैर कोई गवर्नमेंट इस वक्त नजर नहीं आ रही, तो इन दोनों को पता है कि बनानी इन्होंने ही है, अब जोड़ना कैसे है, ये लगा हुआ काम करना ना। तो जिस जोर सा ये थोड़ा सा मुर्गार ने थोड़ा ठंडे थे उस वक्त, ये भी नहीं था ठंडे नहीं थे, पीछे कोशिश कर रहे थे बेंस्टॉकन सेवाची को करने की कि मान जाएं, आ जाएं फाइनलिंग स्पोर में। और जिस तरह वो मेरे फॉलिक्स ने, वो देख रही है कि इससे फारी खेल है, मतलब वो कहाँ तक मतलब एग्री करते हैं ना जाने के लिए। तो ये लगा रहा है इनका आपस में। तो ये पिछले हफ्ते जो आप बोल सकते हैं कि अब फाइनलिंग सही, सुशील मुखसिस मुर्गार ने या मेरे फॉरेक्स ने और लास लोकन ने पिछले एक दो हफ्ते से सही फाइनलिंग करना शुरू किया आपस में भी, क्योंकि अब उन्हें थोड़ा बहुत पता चल गया है कि बेंस्टॉल कंसर्वेटिव, कंजर्वेटिव ने अभी भी उस तरह बयान नहीं दिया, मगर बेंस्टॉल वाले वैसे बिल्कुल ही जिस तरह नहीं कहते, नहीं मान रहे। तो थोड़ा सा ये पता चल गया है कि वो ये बिल्कुल नहीं चाहते। तो इधर से भी आप देख रहे हैं कि वो रेड पार्टी जो हैं थोड़ी थोड़ी करके सारी थोड़ा सा सॉफ्टन अप कर रही हैं, कौन कौन से वो अपने इश्यूज थे पहले वाले जो थोड़ा छोड़ सकते हैं। तो ये है कि अब फाइनलिंग शुरू हो सकती है। जो सबसे मुश्किल लग रहा है वो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स क्या ज्यादा, मतलब आप बाकी सब चीजें छोड़ दें, जो इकोनॉमिक की पॉलिटिक्स है ना उसमें जरा एग्री करना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना, वो चल रहा है अभी इस वक्त।
1: तो अखराजात कम करें, बचत करें, सहूलियात दें। तो दूसरा जो पांच सात घंटे मीटिंग की है وہ جو ہے میتے نے اور لاس نے, تو سب میٹنگ میں اکیلے کیا کرتے رہے ہیں؟
2: اکیلے بس یہ وہی بتا رہے تھے کہ اکانومی کا جو انسا ہے نا اس پارٹ پہ ذرا اصل میں نا ٹھیک اگری نہیں ہو پا رہے ابھی, کیونکہ جیسا آپ جانتے ہیں جو تھوڑی سی بلو پارٹیز ہوتی ہیں انہوں نے اس لیول کو جو مطلب بزنسز ہوتے ہیں ان کا بھی سوچنا ہوتا ہے, ان کو تھوڑی چھوٹ دینی ہوتی ہے, اور وہ اس سے فینس لسٹ جیسی پارٹیز ان کو تو مطلب نا بزنسز کو چھوٹ دینا کیا تو سوچ بھی نہیں سکتے. ان کا تو دل کرتا نا کہ ہر چیز بس بڑھاتے جائیں اور ہر چیز میں پیسے ڈالتے جائیں, مگر آنے کہاں سے ہیں یہ نہیں سوچتا نا کسی نے.
1: لیکن دیکھا جائے تو ایشان, دیکھا جائے تو یہاں سارے کام جو لگے آتے ہیں سرمایہ داروں والے, یہ آپ دیکھ لیں کہ شہر میں ہر چیز, گاڑیوں کو دیکھ لیں, دوسری چیزوں کو دیکھ لیں, تو یہ تو لگتا ہے کہ سارا نظام ہی سرمایہ دارانہ ہے.
2: سرمایہ گانا ذرا راجا صاحب سمجھائیں ذرا. مطلب اکنومی سٹیک فالک.
1: آپ دیکھیں نا, ایک تو عمر کام کرنے والوں کی عمر کی یاد کی طرف بھی جو آپ باتیں نکلی شروع ہوئی ہیں کہ کام کرتے ہیں پینشن والوں کی عمر کو کم کیے یا پہلے بڑھاتے رہے ہیں, اسی طرح گاڑیوں کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ گاڑی عام آدمی تو نہیں خریدتے, یہ تو کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو خریدتے ہیں. گاڑی کی سپیڈ ہے 300 کلومیٹر فی گئے تک جا سکتا ہے, میٹر ان کا 200 تک جا سکتا ہے, تو آپ کی شہر کی سپیڈ ہے 20-25 سپیڈ ہے ٹوٹل میکسیمم.
2: مزدوروں کا نظام آپ بالکل صحیح سمجھے, آج کل ویسے دو مزدوروں والی پارٹیاں بھی دیکھ لینا.
1: میں نے اس لیے کہا نا کہ میتے تو مزدوروں کو جو ہے نا, یہ لوگوں مزدوروں کا خیال ہے, یہ ہماری ہمدرد ہے.
2: ہاں جی بالکل, اور مطلب ہے اور وہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے 1 مئی ابھی ہو کے گیا, آپ انٹرنیشنل کھامتے ہو کے گیا, وہی بات کر رہے تھے کہ آہستہ آہستہ یہ جو چھل سلوتنگ ہے یہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے 1 مئی کو بھی آپ آئرنس کھامتے.
1: لیکن بڑے لوگ تھے اس دفعہ, کافی عرصے کے بعد اتنے لوگ دیکھے ہیں.
2: ہاں جی وہ تو اصل موسم اچھا ہو تو نکل آتے ہیں, مگر یہ کہ ان کو سننے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا, کیونکہ ان کو پتا چل گیا کہ جتنے ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج کل ان میں سے کوئی خود ورکر تو کبھی رہا نہیں جو آج کل بیٹھے ہیں. اس صف میں بھی دیکھ لیں آپ یا سوشل مقصد میں بھی دیکھ لینا, یہ سارے بس پولیٹکس پڑھ کے آگے پولیٹیشین بن گئے ہیں. تو اب وہ جو ورکر بندہ ہے وہ ان کے ساتھ مطلب ریلیٹ بھی نہیں کر پاتا جب یہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہی تو ووٹرز کو یہی ہو گیا کہ اب آپ آئڑا اس طرح یہ آپ آئڑا پچھیا رہی نہیں. تو
1: دیکھیں نا, اگر ہم نے جب لوگوں سے پوچھا آگے پیچھے بات کی تو دو ہی نام آ رہے تھے, میتے اور لاس لوکے جو ہے نا, اور تیسرا بندہ ہی پالیٹکس میں نظر نہیں آ رہا تھا. اس سے پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا.
2: نہیں اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا. اصل میں وہی بڑے بات, پچھلے دن مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ میٹے نہیں دوبارہ بننا, میں نے کہا اصل میں آپ 10-20 سال پیچھے جائیں دیکھیں کتنے کتنی بڑی بڑی پروفائل ہوتی تھی مطلب پولیٹیشنز کی, مطلب اتنا اتنا ایکسپیرینس پولیٹیشن ہوتا تھا, اب اصل میں آتے ہیں اور کام کوئی کیا نہیں ہوتا, اور بس ایکسپیرینس کافی لوگوں کا اب جو بیٹھے ہوئے ہیں ہے نہیں باہر صحیح دنیا کا. پہلے اصل میں صحیح دنیا سے لوگ آئے ہوتے تھے, پتا بھی چلتا تھا کہ جب بولتا ہے کوئی پولیٹیشین تو اچھا بولتا ہے. تو ابھی بھی پارٹی لیڈر بھی آپ دیکھ لیں کوئی کسی میں اس طرح دم ہی نہیں, اور جب منہ کھولنا ہے غلط بات کرنے کے لیے منہ کھولنا ہے تب بھی میڈیا نے بھی سننا ہے. اب میں اس کی دیکھ رہا تھا, اب آپ ویسے ہی فرض کر لینا, یہ پہلے ویمون جب اپنی پالی کی فارمن تھی ہمارے مطلب غیر ملکیوں خلاف کتنا برا برا بولتی رہی ہے, اب میڈیا میں رہی ہے, اب لیپال علی ہنگسے میں گئی ہے, اس کو لرننگ آف بنایا, اب یہ بھی جا کہتی ہے نہیں اس وقت میں جو کہتی تھی کافی چیزیں تھیں غلط ہیں, اس نے وہ ایک دفعہ پھیگا کا ورڈ یوز کیا تھا تب بڑا کہتی تھی جی میرا جی رائٹ ہے میں کر سکتی ہوں, کہتی نہیں اب میں سنتی ہوں تو میں نے غلط کیا ہے یہ وہ. تو میڈیا میں رہنے کے لیے ان کو بس یہی ایک چیز ملی ہوئی ہے کہ اولے نہیں کے خلاف بولتے ہیں تو انہیں میڈیا ٹائم بھی مل جاتا ہے, ٹائم مل جاتا ہے, اس کے علاوہ ان کو بات کوئی کرنے ہی نہیں آتی, اور ان کو بھی پتا ہے کہ غلط ہی بات کرنی ہے اور ہمیں میڈیا ٹائم چاہیے, بٹ صحیح پالیٹکس کی بات کرتا ہی کوئی نہیں آج کل سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں.
1: تو کیا ذیشان کوئی امیگریشن کی باتیں کر رہے ہیں, کوئی پالیسیز بنا رہے ہیں امیگریشن کی؟
2: امیگریشن تو جی وہ تو میرے خیال سے کوئی بھی اس طرح سے کہتے ہیں نا فائلنگ پوپ پہ جو یہ پارٹیاں بڑی بولنے والی تھی, یہ بھی امیگریشن تک تو پہنچے نہیں کیونکہ اکانومی کلیم ہے ان لوگوں کا ایک نہیں ہوتا صحیح طرح. امیگریشن پہ اتنا ہے کہ امید کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ذرا ہلکا کریں, یہ جو سٹیٹس پوسکیپ کے لحاظ سے اسپیشلی ریڈ پارٹیز یہ بول رہی تھی ہم بھی بول رہے ہیں اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے, مطلب اس کے تو ہم کریں گے ادھر سے, میری باقی بھائی جو
1: لیکن امیگریشن پالیسی پہ جہاں جہاں سختی ہیں تو ساری جماعتیں جو ہیں متفق کے اندر سے,
2: بالکل اندر سے متفق ہیں, اس لیے جا کے اب تھوڑا سا یہ بنتا ہے نا تو ہمیں پیچھے سے اب دھکا مارنا پڑے گا کہ کیونکہ سب نے یہ تھوڑی تھوڑی باتیں کی ہیں کہ ایز کرنا چاہتے ہیں, باتوں کا پھر باتیں کی ہیں پھر پوری بھی تو ہونی چاہیے.
1: تو آپ دیکھیں ریڈیکل بھی کافی ووٹس لے کر گئے ہیں ان کے کینڈیڈیٹ سے, کیا وہ اپنے لیڈران کو پش کرتے ہیں؟ آپ تو چلیں ایک اچھی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں,
2: وہ بھی پش کرتے ہوں گے, بالکل پش کرتے ہوں گے, مطلب میری بھی بات ہوتی ہے, ابھی ہمارے جتنے غریخیل میں بھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں, مطلب پش تو سارے کرتے ہیں. یہ ہے کہ فہلنگ میرے خیال سے کہ فہلنگ تک ابھی نہیں پہنچیں گی, مگر آگے جا کے انشاءاللہ امید ہے کہ ان چیزوں کو ہم اٹھائیں گے. اگر تو یہ ریڈ اور ریڈ کے ساتھ اور مرغارنے کی بن جائے تو ان چیزوں کو اٹھائیں گے بالکل.
1: تو یہ یوکرین کے میں جو ہمارے اخراجات ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں جی ہم نے سولیڈیریٹی کے ساتھ یہ سارا کرنا ہے, تو یہ اخراجات کم ہوں گے یا بڑھتے جائیں گے آنے والے دنوں میں؟
2: یہ بھی اس کی ایسے تو اب اگر آپ دیکھیں ڈینش جو سوسائٹی ہے وہ بھی مطلب اس کے کافی خلاف ہوتی جا رہی ہے نا, کہ ملیارڈ ہم نے کدھر کدھر دے دیا, جس طرح آپ کہہ رہے تھے اخراجات کم کرنے اور کرنا, مطلب ہماری اکانومی ڈنمارک کی ویسے تو کافی اچھی ہے, وہ ڈپینڈ کرنا پیسے یوز کدھر کرنے ہیں ہم نے, تو ادھر بہت زیادہ لگایا یوکرائن میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر وہ والی باتیں بھی نکلی کہ ادھر جو پیسے بھیجے ہیں ادھر بھی کرپشن تھوڑی نہیں ہے اس ملک میں, مطلب وہ بھی ٹھیک لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا, یہ بھی بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس اٹھنا شروع ہو گئے تھے ایک ٹائم پہ, تو بڑا سوچ سمجھ کے لگانا چاہیے کہ چلیں مدد کرنی چاہیے جہاں مدد کرنی ہے, مگر پہلے اپنی مدد آپ تو کریں نا صحیح, ادھر ہمارے جو ان سے سسٹم وغیرہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. آپ میں اسکولوں کا نہیں کہتا, اسکول تو پھر بھی بہتر ہے, مطلب پھڑکوا کا اس وقت یا سوسو کا امور ہو گیا, سیوپلائز کا امور ہو گیا, مطلب بہت اس وقت ضرورت ہے ان چیزوں میں انویسٹ کرنے کی ہمیں آنے والے وقت کے لیے, وہ جو ان کو نظر نہیں آ رہا, کوشش کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں مگر ان یہ ویلفیئر سوسائٹی کبھی کوئی صحیح طرح کر نہیں دے, جس میں میں بولوں گا کہ ہم ٹیچرز تو ماشاءاللہ پھر بھی کافی اچھے ہیں مگر پھڑکو کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ادھر سوسائٹی میں جو ہے, اور اس کا بہت فرق پڑتا ہے بچوں کو, تو وہ بھی امید ہے کہ ادھر بھی اب تھوڑا سا
1: جو شور ڈالتی ہے ایسے بھی شور ڈالتی ہے نا, مطلب نیچے جو اپنے ایک ان کے بھی سارے طبقہ ہے جو ووٹ ان کو دیتا ہے اکثریت میں دیتا ہے, اسی طرح سرمایہ داروں کو دیتا ہے, اسی طرح دوسرے لوگوں کو دیتا ہے, تو یہ ووٹ دینے والے بھی تنگ پڑ رہے ہیں. ایز اے استاد آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح کی پالیسی ہونی چاہیے کہ بچے نیچے سے جائیں پڑھے لکھے, ظاہر ہے یہاں تعلیم تو پکی ہے, آپ نے 8-9 کلاسیں کر دسویں تک پڑھنا ہے یا کسی عمر کی حد تک آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے, لیکن یہ بچوں کو اس طرف گائڈ دیں. اب لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ کمون زیادہ آسان ہے, یہ تو تھوڑا سا پڑھ کے آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں, پارلیمنٹ میں تھوڑی سی کوشش کر کے ووٹ لے کر آپ جا سکتے ہیں, تو ہمارے بچوں کو کرنا کیا چاہیے؟ ہمارا مستقبل تو یہ ہے.
2: جی جی, اور ان کو اصل میں جی جو سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا نا, ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے, اور ہم کہتے تو ہیں اسکولوں میں آتا ہے جی این سی موپننگ کمپینیاں چلیں گے جی کہ موپننگ نہیں ہونی چاہیے, مطلب اچھے سے بولنا چاہیے, یہ سب کچھ کرنا چاہیے, مگر میں وہی کہہ رہا ہوں نا یہ وہی بچے ہیں جب ان کے ہاتھ میں موبائل آتا ہے, یہ ہمارے پولیٹیشین کیسے بات کر رہے ہوتے ہیں, کیسی کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو فنیل ویمن کی ایگزامپل دی ہے کہ اس نے جب وہ نیپال کی فارم میں تھی اس نے ایسی ایسی باتیں کی جو اب خود وہی کہتی ہے میں نے غلط کی ہے, مگر بس فیم لینے کے لیے ایسی باتیں کر دیتی ہیں, ایسے لینگویج یوز کرتے ہیں, ایسے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیتے ہیں میڈیا ٹائم پانے کے لیے, بچے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور بچے افیکٹ ہوتے ہیں ان چیزوں سے. اور یہی میں نے پہلے بھی آپ کے بھی پروگرام بولا, سب کو میں یہی بولتا ہوں کہ ہمارے بچے بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, وہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں, کیونکہ اب یہ ساری پولیٹکس ٹک ٹاک پہ بھی آ گئی ہے, ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے ہماری تنظیموں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی کسی طرح اپنے میسیجز اپنے بچوں تک پہنچائیں کہ فائنینس نہیں جس طرح کہتے ہیں بہت ضروری ہوتا جا رہا ہے, ورنہ تو بچے آپ دیکھیں آج کل پالیٹکس وہ ٹی وی آن کریں گے بولیں گے یار یہ دیکھو بڑے کیسے کرتے ہیں اور آپ لوگ ہمیں کہتے ہو کہ ہم لوگ ایسے نہ کریں, ٹھیک ہے نا جی, تو ذمہ داری بڑوں پہ بہت زیادہ ہے, وہ جس طرح مطلب وہ کہتے ہیں نا لرننگ بائی ڈوئنگ ہی ہوتا ہے, وہ دیکھ دیکھ کے آپ کو سیکھتے ہیں, آپ کے بتانے سے آپ جو بتائیں گے وہ نہیں سیکھیں گے, آپ جو کریں گے وہ سیکھیں گے.
1: ایشان پروگرام کو کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھیں قانون جہاں بنتے ہیں جہاں امپلیمنٹ ہوتے ہیں کمیونز ہیں اور پارلیمنٹ ہے, تو तो हमारे लोग जो हैं वो कितने लोग जा रहे हैं, कम्यून्स की तरफ जा रहे हैं, पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं, शोर पड़ता है, इलेक्शन नज़दीक आते हैं, दो तीन महीने जब रहते हैं इलेक्शन होने में शोर पड़ना शुरू हो जाता है। ये मेरी याद में पहली दफ़ा हो रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स ने अभी से कहना शुरू कर दिया, जिसमें आप भी उसमें शामिल हैं, कि हम इन अगला इलेक्शन जो है इंशाल्लाह लड़ेंगे। अब लोगों के पास कोई जवाब नहीं है कि वो आपको चार साल वाच करते रहे, इलेक्शन तो कल परसों महीने दो बाद भी हो सकते हैं, दो साल बाद भी हो सकते हैं, ये तो फिक्स कम्यून के तो फिक्स होते हैं। तो अब बाकी जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, हर बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डेंटिस्ट बनना चाहता है, वो कहता है पैसे कहाँ पड़े हुए हैं।
2: हाँ जी, वो तो फिर ऐसे ही है, वो तो हमें भी याद है, मुझे अपना भी याद है। वो तो बच्चे जब हमें भी हम जब बजाते स्कूल किताब आती थी बैठें या प्ली, वो भी होता है। और अभी भी मैं बच्चों को देखता हूँ, क्योंकि जैसे आपको बताया मैं स्कूल वाइल्ड भी हूँ, तो वो सबसे पहले ये सर्च करते हैं बमाल छेना कुछ भी कहते हैं बमाल छेना, तो वो एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है। ये चीज़ तो आगे बढ़ते बढ़ते आती है। मैंने भी अपनी जिंदगी ऐसे की थी, मैंने भी पहले यही सोचा था जी कि मतलब मास्टर्स करेंगे बिजनेस लैंग्वेज कल्चर में, बाहर के मुल्क निकल जाएंगे। तो फिर जब देखा जी कि दुनिया बाहर कैसी है और इधर भी मतलब अच्छा सुकून है, तो बैंक में भी एक साल काम करने के बाद मुझे भी तब पता चला ना कि नहीं यार काम कुछ और करना चाहिए। तो ये सीख आते आते आती है। बस ये मैं बच्चों को भी कहता हूँ, शौक है अगर कोई तो शौक को अपने कोशिश करो काम बना लो, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं। मगर जाहिर है कुछ लोगों का शौक ही है पैसे कमाना, तो इसी जरिए भी वो बन जाते हैं कि मतलब यार पैसे तो अच्छे आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, शौक हम अपना बना लेंगे, तो ऐसे भी बन जाता है। मतलब ये है कि बस शौक रखे रखे। मगर काफी दफा ये हो जाता है कि कुछ बंदों को मैं भी जानता हूँ, पढ़ लिख गए हैं, अच्छे जॉब्स वगैरह, मगर मजा नहीं आता। मगर ये सोचना चाहिए कि सारी जिंदगी वो काम करना है, काम वो करो जिसमें मजा है। इस तरह माशाल्लाह देखे ना, आप भी जर्नलिज्म कितने अरसे से ये सहाफ़त कर रहे हैं। अब कल मेरे ख्याल से कल 3 मई आ गया ना जर्नलिस्ट डे,
1: आज 3 मई
2: आप लोगों का भी आज, अच्छा आज 3 मई है, मुबारक हो जी फिर आपको, आज तो फिर जर्नलिस्ट तय हो गया। इस तरह डे आते हैं हम सब के जो काम कर रहे हैं बड़े शौक से, हमें तो इन दिनों का बड़ा इंतजार होता है। 5 अक्टूबर हम टीचरों का होता है, तो काम असल में ऐसे ही करें जिस तरह आप देखें माशाल्लाह इतना शौक से कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी के साथ भी कर रहे हैं, उसका मजा ही अपना होता है कि काम का काम हो जाए साथ खिदमत खल्क भी हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह इससे बेहतर और क्या हो सकता है।
1: थैंक यू जीजान, मैं आखिरी सवाल करता हूँ, चूंकि आप जिम्मेदार जगह पे बैठे होते हैं, मौका मिलता है आपको बात करने का, बात बढ़ाने का, तो हम गाड़ियां तो खरीदते हैं बड़ी बड़ी छोटी गाड़ी, गैर मुल्की तो कोई अब छोटी गाड़ी खरीदता नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आप देख लें, टैक्सी में गाड़ियां देख लें, बड़ी बड़ी गाड़ियां पड़ गई हैं, महंगी गाड़ियां आ रही हैं, इलेक्ट्रिक सारी तकरीबन इलेक्ट्रिक हैं, पार्किंग की जगह नहीं मिल रही, शहर में आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलती, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अभी तो जगह है लेकिन आम पार्किंग की जगह ख़त्म हो रही है। तो जिनके विले हैं तो वो अपने विलों में, या जिनके अपने घरों में पार्किंग वो पार्किंग कर लेते हैं, तो या तो अब ऐसा कानून बने कि जो बिल्डिंगें बन चुकी हैं उनका तो कसूर नहीं है, लेकिन जो नई बिल्डिंगें बनती हैं उनके नीचे पार्किंग बनती है लेकिन वो पार्किंग भी प्राइवेट हो जाती है।
2: बिल्कुल, असल में और वो बस क्लाइमेट के नाम पे ऐसे ही कर देते हैं ना। अब हमारे आप देखें, अब शहर की बात तो कोपेनहेगन तो अल्लाह माफीज है, मैं इस हफ्ते एक दफा गया था फिर कानों का हाथ लगा के निकला, मगर हमारे बेलरूप देख ले आप, इतनी नई मतलब कंस्ट्रक्शन काफी हुई है और पार्किंग का हमें भी इशू बन गया, मतलब इवन तो शहर से बाहर है क्योंकि बनाते ही आजकल ऐसे है। और फिर आर्ग्यूमेंट आगे से ये है ना, वी पिकस द शोन नैत के जी हमने स्टेशन के पास बनाया, तो उन्होंने गिनती ऐसे की होती है कि एक घर की पूरी एक गाड़ी भी नहीं लगाई होती, 0.8% गाड़ियां होंगी, एक एक गाड़ी भी अगर लगाएं मतलब। और आजकल आपको पता है कि बेशक स्टेशन के पास रहते हैं, 1.5-2 गाड़ी तो हर घर के पास है, मगर वो जिस तरह ना बस क्लाइमेट के नाम पे वो हमने इधर उधर ना पूरी दुनिया का वो उठाया हुआ है बोझ, वो कहते हैं हमारी इसमें कुछ पार्टी है। अच्छी बात है, अच्छी फिक्र है, मगर जब आप देखते हैं कि दुनिया भर में होकर आए कि तो फिर वो वाकई में कहते हैं कि जी डेनमार्क में हमने फापसू से पी पी के ना क्लाइमेट बचा लेना। नीयत अच्छी है इसमें कोई शक नहीं, मगर बहुत मुश्किल करते जा रहे हैं अपनों के लिए ही हमेशा, तो हमें भी वो इसीलिए कहते हैं ना कि इडियलिस्ट एक चीज होती है, आइडियलिस्ट होना चाहिए मगर उसके साथ रियलिस्ट भी होना चाहिए कि काम हो कौन से सकते हैं। और वही मेरी, मैं अब काफी यंगस्टर से जाके अभी भी मिलता हूँ, जैसा आप कह रहे हैं अगले इलेक्शन की तैयारी अभी से हो रही है, और इस दफा जैसे मैंने आपको बताया भी है और बाकी से बोला कि मुझे फील हुआ कि हमारे काफी यंगस्टर हैं जिन्होंने इन हाउस लिस्ट वगैरह को जाके वोट दिया और इस साइड पे, तो उनसे अब जाके यही गुफ्तगू होती है ज्यादातर कि ठीक है अच्छा है कि वो सोच अच्छी है कि हम भी चाहते हैं कार्ड छेले हो जाए, सब फ्री हो जाए, और ये मतलब ट्रांसपोर्ट भी फ्री कर दो, मगर पैसा कहाँ से आएगा। तो इन चीजों को देखना समझना बड़ा जरूरी है, अपने यंगस्टर्स को समझाना बड़ा जरूरी है, अपने साथ लगाना बड़ा जरूरी है। तो वो मेरी बड़ी कोशिश है कि अभी से ही बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है। मैं तो अब इसीलिए शुक्र किया कि गर्मियों के जुम्मे आए हैं, अब वो भी पढ़ सकता हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट मसाजिद में जाकर दोबारा पढ़ना शुरू किए हैं, लोग मिलते हैं, बात करना चाहते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, और इसको मैं इंशाल्लाह कंटिन्यूस करूंगा। अभी एग्जाम बच्चों के खत्म होते हैं तो एक दफा खुद भी एक्टिव होऊंगा, सोशल मीडिया पे भी दोबारा देख रहे हैं कि किस तरह अपने यूथ को इन्फॉर्म कर सके, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी।
1: अगली दफा को यूथ वोट जिसको भी देगी वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे।
2: इंशाल्लाह जी, बस उम्मीद देखे जी वही हमारा मुस्तकबिल है, वो जो चाहते हैं हमें उस तरह काम करना चाहिए, और पूरी कोशिश है जो उनकी फिक्र है, जो यंगस्टर्स की हमारी भी वही फिक्र रही है पूरी जिंदगी, और अभी भी वही फिक्र है, तो इसलिए उनके शाना बिशाना होकर लड़ेंगे। मैं वही बच्चों को भी कहता हूँ कि मैं अब यंग नहीं हूँ, मेरी 40 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है, मगर आपकी ये जो मुश्किल प्रॉब्लम है आप जो बता रहे हैं, हम भी इन्हीं में बड़े हुए हैं, और हमें अब इन काफी चीजों की समझ भी है कि इनको डील कैसे करना है। माशाल्लाह से कॉन्टेक्ट भी है, और हमारे इतने अच्छे अच्छे लोग इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और कामयाब होना चाहिए। ज़ाहिर पैसे कमाएं, अपने लिए भी कमाएं, मगर हम जो अपने बंदों के लिए भी साथ कर सकते हैं उससे ज्यादा मजा और किसी चीज का नहीं है। मसाजिद में आप जाते हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं, उसका स्वाब आपको है, मगर जो काम आप अपनों के लिए करते हैं उसका और बहुत अजर है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मसाजिद का काम सिर्फ नमाज पढ़ाना नहीं है, हमें सोसाइटी में रहना किस तरह है और हम कैसे डील कर सकते हैं, जो इश्यूज आ रहे हैं इनको सिखाना बड़ा जरूरी है हमारी तंजीमों के लिए। तो इंशाल्लाह जिस तरह आपको भी बताया, आपके सुनने वालों को भी बताया कि मेरे लाइक कोई खिदमत, कोई अगर आप चाहते हैं यंगस्टर्स को इकट्ठा कर लें, और ये मत सोचें कि मैं पॉलिटिशियन एज उस्ताद बुलाएं, तो इंशाल्लाह आके उनके साथ मैं कनेक्ट करूंगा और उनकी जो भी होंगी फोतेंगे सुनेंगे, आपस में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उन्हें गाइड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे चलना है, क्योंकि आजकल बहुत ही मुश्किल हो गया क्योंकि सोशल मीडिया पे वो जितना हेट देखते हैं वो इतना तो हम भी अपने टाइम पे नहीं देखते थे। तो हमारे बच्चों को हमारी बहुत जरूरत है।
1: तो क्या कोई कानून, तो हम जमहूरियत का नाम लेकर बोलने लिखने की आज़ादी लेकर बहुत कुछ कर जाते हैं, तो जिस तरह कोई सियासी जमातें तो तब्दीली लाती हैं, और जो सियासी जमातें नफरत फैलाती हैं, तो ये कैसा कानून है?
2: जी जी, और उनके खिलाफ मतलब खड़ा होना पड़ेगा, और यही तो बार बार बताना पड़ेगा कि नफरत फैलाने वाले जो उनसे हैं इनसे ही बचना चाहिए, क्योंकि ये बस अपनी पावर के लिए फैला रहे हैं। और इसमें बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल उठा उठा के देखे, अब ये फनीले वहम उनका दोबारा उठा लेंगे, मतलब कहते हैं बाद में कुछ और कहते हैं, इन्हें भी पता है नफरत फैलाना बड़ा गलत काम है, मगर बस उसी पे ही हाइप मिलता है। नफरत पे बात हो रही, मेरी बेटी आई गाल कहती है बाबा अभी इसके अलावा प्रोजेक्ट एन बयान स्क्री, मैं कहा पुत्र आप ना अपना एम रख के, अपने जो इमने ना रख के देखना कि हिटलर पावर में कैसे आया था। वो उसके साथ आजकल मेरी बड़ी मजे की डिस्कशन होती है, कहती बाबा वो तो मतलब दीवाने थे लोग उसके, और उसकी स्पीचेस और वो जो बातें, मैं कहा उसकी स्टेट्स मतलब उसके जो कोर्ट्स है ना वो लेके आप देखना कि ऐसे हेट करते करते, और मतलब कि जी मैं अपने मुल्क के लिए बेहतर करूंगा, मैंने कहा ये एक मतलब हेट स्पीच और जोन सी होती है, ये इस तरह के लीडरान बहुत आ गए दुनिया में और इनसे हमें बचना चाहिए, और इनका मतलब बढ़ चढ़ के हमें जोन सा नहीं मुकाबला करना है।
1: क्योंकि तो बच्चों को इस उम्र में हीरो अच्छे लगते हैं, विलन अच्छे लगते हैं। जी
2: जी बिल्कुल, वो उनकी समझ आसानी में आती है ना, आप देखे ना हमारी वो हमदी ये कि आप अपनी बॉलीवुड लॉलीवुड फिल्में देख के बड़े हुए हैं, वही बंदा क्या था विलन पूरी फिल्म में यार अच्छी भली जिंदगी गुजार गया, हीरो मतलब पूरा एंड में बस वो सारी जिंदगी मुश्किलों में काट काट के हीरो जो उनसा होता है ना एंड में जीतना होता है, 2 घंटे की फिल्म विलन ने तो मौज ही किए तो दिखाना पड़ता है कि जाहिर है कि जिंदगी अच्छे अखलाक, जी हमारा दीन भी अखलाक सिखाता है, अच्छे अखलाक के साथ अपना दीन और दुनिया दोनों इसी से सबर नहीं है, क्योंकि दुनिया में तो ठीक है 2 घंटे आप अच्छे रह लेंगे, एंड अच्छा नहीं होगा ना फिर, तो अखलाक में इंशाल्लाह।
1: तो पॉलिटिक्स निशान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिया, और मुझे पता है आपने जाना होता है, मीटिंग्स होती है, ये छुट्टी का दिन होता है, तो काम करने वाले के लिए तो एक एक मिनट जो है उसका कीमती होता है, तो
2: बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैं आजकल वही आपको बोला ना, अभी बस मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अब ये आज संडे आधा निकल जाएगा, पढ़ाते पढ़ाते कल जरा बस देखना है कि बच्चों की तैयारी कैसी है सुबह के लिए, जो मेरे अपने ट्यूशन वाले बच्चे हैं, तो आज इसमें निकल जाएगा। वही बोला पॉलिटिक्स, इंशाल्लाह ये एग्जाम्स हो गए तो इसके बाद मैं एक दफा फिर बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा दोबारा, ऑनलाइन भी और सारा। तो आपको जी दोबारा जर्नलिस्ट डे मुबारक हो राजा साहब, आज का प्रोग्राम तो फिर आपके नाम।
1: थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।
2: ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी।
1: सामाई नाज़रीन, ये थे ज़ीशान जो के बात कर रहे थे। सामाई ना, गपशप की शक्ल में हम बात करते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए, कहने वाला खुलकर बात आप कर लें। तो जब आप बहुत सारी पुचीदा किस्म की बातें सवाल करना शुरू करते हैं तो फिर जवाब सोच समझ के देना पड़ता है। तो इसलिए जब आप गपशप की शक्ल में बात करते हैं तो सारी बातें जो है वो आसानी से वो करते हैं, फिर समझाने में भी उनको जो है कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, सवाल करने में भी फिर दिक्कत महसूस नहीं होती। तो समय नाज़रीन हमारे साथ साथ रहिए। अगर किसी ने कोई बात करनी है, अपना नुक्ता नजर पेश करना है, लेकिन हमारा किसी के साथ मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है।
3: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। समाइन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी खबरें होती हैं जो आपके साथ शेयर करनी होती है। जो भी नई खबर आती है तो हम कोशिश करते हैं कि अपने समाइन नाज़रीन तक इस खबर को पहुंचाया जाए और ख़बर ली जाए। जो खबर देते हैं ज़ाहिर है उनके पास खबर होती है, बहुत सारा टाइम उनका भी लगता है, तो हर आदमी बंदा बड़ा मसरूफ़ होता है। तो हमारे तजिया निगार अदनान अमीन अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अदनान, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
4: वालेकुम अस्सलाम सर, बिस्मिल्लाह, कैसे हैं?
1: अल्लाह का शुक्र है अदनान। मौसम तो आज बहुत अच्छा है, लेकिन आज खबरों के लिहाज से क्या आप लेकर आए हैं आप?
4: राजा साहब, खबरें तो बहुत ज्यादा हैं और बहुत, जैसे पता है मौसम भी आज अच्छा मौसम है, उम्र की तरफ जा रहा है। और मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक खबर है जिसका इतनी हाईलाइट नहीं है, मगर उसका क्या कहते हैं एक आउटपैक बहुत काफी किस्म का आ सकता है। हम यहाँ एमस्टर्डम के मून में रहते हैं, वो 2019 का केस है। वो ये केस था कि दो फक्चिकें टाइटरी फीमेल जॉब के लिए स्कूल पे, और उनने क्या कहते हैं हाथ देने से कहा था कि हमने हाथ नहीं देना, हमारे कल्चरली मुसलमान थे डेफिनेटली, और उनको पक्षी कहता थे और उनको उस वजह से जॉब से बाहर निकाल दिया गया था। वो फिर लीज टेलिंग ने उनके अंदर केस चला था और वहां पे उनको क्या कहते हैं मिल गई थी कि वो सही थी और स्कूल वाले गलत थे। फनी बात है, उस वक्त मैं खुद स्कूल का प्रिंसिपल का मेंबर था, मुझे पता है। और ये हुआ था कि फिर उनने जो एपिसोड कमून है उनने उस केस की डिसीशन को नहीं था माना, तो वो फिर केस उस्तालेंस हाथ में गया था। वहां 2-1 से उस्तालेंस हाथ ने एपिसोड कमून को कहा था वो सही है। अब वो केस मंडे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ है और कमिंग डेज में उसका क्या कहते हैं एक रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट एक बड़ा ही क्या कहते हैं स्पेक्टर है कि कल्चरली वाइज देखा जाए तो आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हाथ देने से। अब देखते हैं कि जज सुप्रीम कोर्ट के उस केस में क्या फैसला देते हैं।

0: ये था कि मैं उस वक्त इन ही पील था कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, मगर ठीक है, उस वक्त का जो प्रिंसिपल है और जो क्या कहते हैं जो लीडर थे स्कूल के, उनने इस फैसले में क्या कहते हैं उनका क्या कहते हैं साथ दिया था। और मैं भी आज ही कहूंगा कि ये किसी की आजादी में तो नहीं जाना चाहिए, मगर आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या फैसला इस पर देती है और क्या आगे का क्या सिस्टम बनेगा,
1: अदनान,
0: क्योंकि
1: यहाँ तो केस जब चल जाता है तो फिर उसका फैसला होकर रहता है, फिर ये सालों नहीं गुजरते जो है ना, जब केस अदालत में चला गया, केस शुरू हो गया, तो उसका फैसला जब तक नहीं होता खत्म नहीं करते।
0: भाई राजा साहब ये केस 2019 का चला हुआ है और देखिए 7 साल बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आया है, और वो इसलिए आया क्योंकि ये केस बड़ा मुश्किल है, ये कोई आसान नहीं है फैसला देना, क्योंकि आप देखें कि हाई कोर्ट के अंदर स्प्लिट डिसीशन है, 2-1 की डिसीशन है, तो आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है अगले दिनों
1: चलें,
0: में।
1: ये तो
0: मेरे हाथ
1: फैसला आ
0: से
1: जाएगा चूंकि अब चल पड़ा है। तो अदनान, अभी क्या फैसला हुआ, हुकूमत का कोई नई खबर आई?
0: राजा साहब हुकूमत की उनकी कोई डिटेल्स बाहर तो नहीं अभी आ रही, बस ये है कि ये रिकॉर्ड टूट जाएगा जो 42 दिन का था 2022 का, वो बस टूट जाएगा, और अभी तक तो नहीं कोई कोई सिर पर बना डेनमार्क की गवर्नमेंट का, निगोशिएशन चल रही है और होपफुली कमिंग डेज में क्या कहते हैं हुकूमत
1: तो मतलब है कि
0: बन
1: हिस्सा
0: जाएगी।
1: मिलने जा रहा है सियासतदानों को, जितना जुस्सा इतना हिस्सा तो ले लेंगे ये।
0: रिपीट करें 1 मिनट क्या?
1: मैंने कहा सियासत में होता है जितना जुस्सा इतना हिस्सा, जितनी पार्टी की मेंबरशिप होगी जो इताअत करेंगी पार्टी, डेफिनेट कुछ ना कुछ तो वो गैन करेगी, कमेटियां लेंगी, वजारत लेंगी, कुछ ना कुछ तो लेंगी।
0: हाँ वो राजा साहब वो देखिए वो तो जब हुकूमत की पूरा रखेंगे कौन ले और सारी चीजें बनेंगी तो वो क्या कहते हैं एक एक अपना बनाएंगे, क्योंकि आप एक और एक एक एक ब्रेकिंग न्यूज जो चल रही है 3-4 दिनों से जो जो हमारे प्रोग्राम के बाद ही शायद हो गई थी, वो ये है कि डेनमार्क के अंदर हिस्ट्री के अंदर एक बड़ी अजीब चीज हो गई है, जैसे आपको मालूम होगा काफी लोगों को पता भी होगा कि पार्लियामेंट में एक नई पार्टी आई थी जिसका नाम था पवन 25, उसका खाली चेयरमैन बाकी रह गया, बाकी उसके जितने साथ 3 साथी आए थे एक तो उसके बाहर एक्सक्लूड कर दिया था ना, अब उसका आखिरी साथी भी छोड़ गया, मतलब कि डेनमार्क की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि गवर्नमेंट बनी ही नहीं है तो एक पार्टी का खाली चेयरमैन रह गया,
1: मतलब
0: ये
1: पहले
0: कभी
1: शो
0: नहीं
1: में ही
0: हुआ,
1: फिल्म फेल होगी, पहले हफ्ते में ही।
0: पहले 40 दिनों में फिल्म फेल हो गई, क्योंकि जिस बात पे वो मिलना कहते हैं ना जिस स्लोगन से वो अंदर आया था और वो जो लेके आया था वो ही क्या कहते हैं उसका ही क्या कहते हैं एक किस्म का पटाखा बज गया है, और मगर मगर उसका फायदा भी देखा जाए तो मैं भी उसको ये कहूंगा कि उसका फायदा जो है ना फायदा किसी को नहीं है, क्योंकि जो उसके मैंडेट है ना वो एक किस्म के मौत में स्मिथ को जा रहे हैं, तो देखा जाए तो वो उस तरफ ही जा रहे हैं, और मॉडर्न मेन स्मिथ जो है उसके बारे में भी क्या कहते हैं उसकी जो स्टाइल है ना और जो जो जो जो वो करता है वो ऐसा है कि वो मैनिपुलेशन में बहुत तेज है, क्योंकि उसकी बंदा बात देखे ना और चीजें देखे तो बंदा हैरान होता है कि वो बंदा क्या कर रहा है, तो अब देखते हैं कि उसकी पोजिशन क्या बनती है, क्योंकि मैंने ये पहली दफा हुआ है कि डेनमार्क की हिस्ट्री में भी देखा जाए तो जहां तक मुझे पता है कि डेनमार्क की जो पॉलिटिक्स फेस्टिवियम होती है ना उसके अंदर नॉर्मल एक पार्टी का चेयरमैन नहीं बनता बैठता, ये इस बार खुद बैठ गया है और ये क्या कहते हैं छियालीस फॉरमैन है, क्योंकि पहला तो विंस्टा का बैठा हुआ है ना फॉरमैन फॉर पॉलिटिक्स, फिर हमारी पार्टी का आता है कि फर्स्ट नेस फॉरमैन, और फिर SF का आता है, फिर ये आता है क्योंकि वो मैंडेट के हिसाब से आता है और मैंडेट के हिसाब से तो विंस्टा का नीचे आना था, मगर जैसे जैसे वो इस वक्त चेयरमैन है पार्लियामेंट का अक्टूबर तक वो रहेगा जब तक नई पार्लियामेंट का क्या कहते हैं सेशन नहीं लगेगा, तो उतनी देर तक।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: नहीं, अभी वो सिलसिला जो है वो अभी चलेगा, लेकिन ये है कि इनकी हुकूमत ये अपनी बनाएंगे, उसमें मेरा जो एक तजिया है वो ये है कि उसमें सोशल डेमोक्रेट, मॉडरेट्स, ऐसे वगैरह ये हुकूमत बनाएंगे, और सपोर्टिंग पार्टी ये अल्टरनेटिव और इंसुलेशन को रखेंगे। तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला इन आने वाले दिनों पे भी अगर आप मौका देंगे तो उस पर मैं तफसीलन बात करूंगा। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, थैंक यू
1: बहुत
0: सो मच
1: शुक्रिया
0: मिलने
1: आपका
0: का।
1: सिकंदर, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया
0: थैंक यू
1: आपका।
0: जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
1: सामाईन और नाज़रीन, ये थे फ्री ग्रोन एक पार्टी के फोरमैन मलिक सिकंदर सिद्दीक, जिनकी आप बात सुन रहे थे। सामाईन नाज़रीन, हमारा किसी से मुतफिक करना ज़रूरी नहीं है, अगर आप कोई बात करना चाहें तो आपके लिए हमारा टाइम हाज़िर है, हमारे साथ साथ रहिएगा।